पौड़ी नानक अंत न जापनी हरता के परवर आप कराए शक्ति फिर आप कराए मार एक नगली जंजीर एक तुरी चढ़े बसार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिनकी यार फिर ते सही करनी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਬ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, TRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित

0: वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरे वेब 347.6 मीटर या 873 किलोहर्ट से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं ज्ञान अमृत।

0: हुने तुसी सुन रहे सी भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना मीडिया वेब 347.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
1: खेतीबाड़ी

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

0: ਅਤੇ ਰਾਤ 8:15 ਸੁਰ ਸਰਿਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪੰਡਿਤ ਚਮਨ ਲਾਲ ਪੱਲਾ। ਰਾਤ 9:15 ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ, 9:30 ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 10:00 ਸੰਗੀਤ ਕਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:02 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:10 ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਗਾਤਾ। ਏਸੀ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6:55 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਇਯਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ੍ਰੂਯੰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਚਕਃ ਪੁਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्तवक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारतपर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसावर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरियास्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुरनगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्यप्रदेशे, पूर्वीय उत्तरप्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: जी दोस्तों, आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो इस वेले तुसी सोनी सवेर प्रोग्राम सुन रहे हो ते इस सोनी सवेर प्रोग्राम दे विच तुहाडे लई बहुत सारियां जानकारियां गल्लां बातां दा जिक्र असी तुहाडे नाल करदे रहिंदे आ ते उहनां जानकारियां दे विच इह वी अज जानकारी तुहाडे नाल सांझी करनी बनदी है कि अज 23 मई 2008 दे विच भारत ने सत्ता तो सत्ता ते मार करन वाली मिजाइल पृथ्वी 2 दा सफलतापूर्ण परीक्षण कीता सी। इसे तरह 23 मई 2014 नूं रूस अते चीन ने सीरिया दे विच जंगी अपराधां लई अंतरराष्ट्रीय अपराधिक अदालत दी स्थापना लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच वीटो शक्ति दी वरतों कीती सी। 23 मई 2016 नूं भारत पुलाड़ खोज संस्था इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा पुलाड़ केंद्र तो पूरी तरह भारत विच बने स्पेस शटल RLV-TD नूं लॉन्च किया। इसरो वालों 23 मई 2016 नूं रीयूजेबल लॉन्च वहीकल टैक्नोलॉजी डेमोनस्ट्रेटर द लॉन्च पुलाड़ टैक्नोलॉजी विच भारत की वधदी महारत का सबूत सी। इस दा सफल परीक्षण जिस

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
6: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
7: 1962 में हमारे राजनीति

0: संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जांजीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
4: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था।

0: 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
1: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य

समर्थक अवार्ड नाल सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड में चामोली जिले स्थित पवित्र श्री हेमकुंड साहब के कपाट अज श्रद्धालुओं खोल दिए गए ने। इस दे नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानूं जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: कट व्याज ते लोन चाहिदा, ओ भी ऐप तो, वाह
3: फसिया। अनजान ऐप्स तो बचो,
4: RBI कहंदा है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
5: मीडियम वेब 343.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है प्रोग्राम महक पंजाब दी। महक पंजाब दी प्रोग्राम दे विच सब तो पहला गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं गुरदास मान ते सुनिधि चौहान दियां आवाज़ां दे विच गाया ननकाना फिल्म दे विचों।

जी दोस्तों, कभी किसी अपने का इंतज़ार, कभी सपनों के पूरे होने का इंतज़ार, तो कभी उस एक मुलाकात का इंतज़ार। जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार एक अजिहा एहसास है जो दिल नूं बेचैन भी करता है ते उम्मीदा दे नाल भर भी दिंदा है। इसे खूबसूरत एहसास नूं समर्पित है साडा अज दा ए फिल्म संगीत दा प्रोग्राम ते अज दी साडी थीम है इंतज़ार। इंतजार एक अजिहा एहसास है जो कदे मुहब्बत बन जांदा है, कदे यादां दा दर्द ते कदे उम्मीदां दी रोशनी।

रात बीत ही जाती है तेरी सुहानी याद बनके, कुछ अनकही बातें रह जाती है कहानी बनके। अक्सर आ जाते हो तुम होठों की मुस्कान बनके, कभी सनम तो कभी इन आँखों का पानी बनके। जिस तरह दोस्तों सवेर नू शाम दा, शाम नू रात दा, हनेरे नू चानन दा इंतज़ार हुंदा है ना, उसे तरह कुछ दिल अपने प्यार दी एक झलक दे लई सारी उम्र उड़ीकदे रहिंदे ने। ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ।

जिस पल के इंतजार में मुश्किल से पल पल काटा था, वो पल किस पल में गुजर गया, पल भर एहसास ना हुआ। अब भी इंतजार है एक पल का, वो पल भी आकर गुजरेगा, और हम किसी पल के इंतजार में खुद ही गुजरा हुआ पल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय भी पल पल करते हुए, चाहे इंतज़ार कितना ही लंबा क्यों ना होवे, बीत ही जाता है। तो कहिंदे ने इंतज़ार दे विच समय दियां घड़ियां जड़ियां ने होर लंबियां हो जांदियां ने, पर जदों वो पल आ जाता है तो फिर खुशियां का कोई ठिकाना ही नहीं हुंदा।

इंतजार की भी अपनी एक कहानी होती है। हर धड़कन में छुपी कोई निशानी होती है। जो धैर्य से राह देखे अपने सपनों की, उसके हिस्से में एक दिन सफलता जरूर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद अते इंतजार दे इस खूबसूरत एहसास नूं गीतां दे जरिए तुहाडे तक पहुंचाउण दी एक छोटी जी कोशिश कीती है। ते एहसास हमेशा दिलां दे विच साडे ते तुहाडे धड़कदा रहिंदा है, ते इसे तरह धड़कदा रहेगा। इसे उम्मीद ते फिर एक इंतजार दे नाल कि तुहाडे नाल फिर अगले हफ्ते एक अगली टॉपिक ते एक अगली नवी एक थीम ते मुलाकात होएगी। मैनू पूजा हांडा नू अज दा ए फिल्म संगीत इत्थे ही खत्म करन दी इजाजत दे दिओ। आकाशवाणी दे अलग अलग सिलसिलें दे नाल तुसी इसे तरह बने रहना।

0: ज्यादती हो रही है तो जरूर दसो, असी उस बाबत जरूर बनती कार्रवाई करांगे।
1: जी ये लिख देने कि सारे एंकर ने इस तरह कर दे, कोई
0: जी
1: एक अद्धा ही है, ते जिन्हें ये भी लिख रहे ने कि जिस दी भी मैं गल कीती है वो समझ ही गए होंगे।
0: अच्छा
1: ते हाँ, जेकर तुहानूं वाकई इस तरह लगता है तो उस दिन की कोई घटना तुसी या उस दिन की तारीख, उस दिन दे प्रोग्राम दे एंकर दा नाम विस्तार सर लिख सकते हो।
0: जी
1: ते बाकी तुसी बिल्कुल सही गल कही है कि
0: जी
1: अक्सर इस तरह हुंदा है फोन इन प्रोग्राम्स दे विच।
0: बाबा जी
1: अगे लिख
0: शुक्रिया।
1: देने जी, श्री फतेहगढ़ साहब अतापुर कलोनिया तो रामनाथ अतापुर, सुखमन जीत इन्हों का पुत्रा, नाल पोतरी सहजप्रीत कौर
0: अच्छा जी
1: जी।
0: जी
1: ये कहंदे
0: निके
1: कि
0: निके बच्चे भी साढ़े किन्ने सुहिरद लिसनर ने, है ना, हर
1: अजकल
0: चिट्ठी च उन्हों का जवाब आंदा है ना।
1: अजकल जेहड़े फोन इन प्रोग्राम आउंदे ने ना, उन्हां दे
0: जी
1: विच वी बहुत सारे स्रोते कहंदे ने कि मैं फलां पिंड तो बोल रहा ते नाल मेरे पोता या पोती ने ये बहुत चंगी गल
0: वाह,
1: है,
0: इहदा मतलब ये है कि जिहड़ी अगली पनीरी है ना वो भी रेडियो दे नाल जुड़ रही
1: बहुत
0: है
1: चंगी
0: ना।
1: गल है जी। ते
0: जी
1: इस रोते जोड़ रहे ने, ये होर भी चंगी गल है। कहिंदे 8 मई नूं प्रोग्राम चिट्ठी तुहाडी चिट्ठी मिली सुनिया बहुत वधिया लगा, जो कि मैडम पूनम जी ने ते परमजीत जी ने पेश किया। बाद विच प्रवासी पंछियां बारे प्रोग्राम पेश किया गया, सुन के दिल खुश हो गया
0: जी
1: जदों दस्या गया कि ये किन्ने किलोमीटर दी उड़ान भर के प्रवास करदिया होया साडे मेहमान बन के आउंदे ने।
0: जी वाकई वाकई बिल्कुल ठीक
1: ये
0: जी
1: कहिंदे कि इन्हां दी इज्जत करनी चाहीदी है तां जो असी इन्हां नूं बचा सकीए, परमात्मा नूं खुश कर सकीए। ये गीत संगीत देण वाले हुंदे ने, वातावरण नूं वधिया बना के रखदे ने। ते अगे इन्हां ने गल ये वी कीती है कि पाणी बचाओ, रुख लगाओ ते कुदरत दी संभाल करो, ते आकाशवाणी दे प्रोग्रामां दे लई दुआवां भेजियां ने।
0: वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही सोहना खत इन्हां ने लिखिया। जिहड़ी सब तो खूबसूरत गल इन्हां ने लिखी हुई है कि साडे पंछी मेहमान हुंदे ने, इन्हां दी इज्जत करनी चाहीदी है। मेरा ख्याल तो है जी कि कुदरत कायनात किसी भी शक्ल दे विच होवे, चाहे
1: जी
0: वह बनस्पति दे शक्ल विच है, चाहे पवन पाणी दे शक्ल दे विच है, चाहे इत्थे रहण वाले बशन दे जिन्हां विच मनुख भी शामिल है,
1: जी
0: चाहे पंछियां जानवरों की शक्ल विच होवे, सब दी इज्जत करनी बनती है। सब नू उन्हां दा बनदा होया हक, जगह और रुतबा देना बहुत जरूरी है। और असी मनुख क्योंकि सोचण और समझण की शक्ति रखते हैं, असी इकल्ले इकल्ले वो जीव हाँ धरती उपर जिहड़े इस तरह की शक्ति नू इस लैवल तक रखते हैं। बाकियों भी हुंदी है लेकिन थोड़ी मुख्तसर हुंदी है, इंसानों ये शक्ति बहुत विशाल रूप दे विच हुंदी है।
1: बहुत वधिया गई
0: जी
1: तुसी गल, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि ये जो धरती है सिर्फ इंसानों की नहीं है।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सो इज्जत सब दी करनी बनती है। तुसी बहुत ही सोहनी गल लिखी, असी थोड़े नाल 100% मुतफिक हाँ, थोड़े नाल सहमत हैं इस मामले नूं लैके। सो बहुत शुक्रिया जी, अगलियां चिट्ठियां विच इसे तरह सोहनिया सोहनिया खूबसूरत गल्लां लिख के सानू भेजते रहो जी।
1: पिंड माधोपुर नेड़े सरहंद मंडी तो बलविंदर बिला माधोपुरी, ते सारा माधोपुरी लाणा
0: लाणा
1: जी
0: लाणा मतलब परिवार। जी जी
1: परिवार 9 मई नूं अपना प्यारा प्रोग्राम सुनिया परमजीत जी ते पूनम जी ने बखूबी पेश किया, वाह जी वाह क्या बात है। कई चिट्ठियां ते ईमेल पढ़ियां गईयां, मेरी भी चिट्ठी पढ़ी गई सुन के लज्जत आ गई।
0: जी
1: चिट्ठियां मिठियां फोन ते कर दियो जी, बाकी सुखजीत जी नाल जो पुरानियां मुलाकातां सुनदे आं तां सुन के मन खुश हो जांदा है। असीं सारे प्रोग्राम सुनदे रहिंदे आं, रंगली धरती हैलो फरमाइश देहाती प्रोग्राम वास्ते विहड़े चंगे लगदे ने।
0: वाह जी वाह, बलविंदर बिल्ला माधोपुरी जी, सब तो पहला तो जिहड़ा तुसी एक लफ्ज़ वरत्या ना लाणा, ये लफ्ज़ सच्ची दिल नूं धू पा के लै गया है ना।
1: जी
0: इहो जिहे कई अल्फाज ने जिहड़े हौली हौली साडी बोली चों निकलदे जा रहे ने, मिठे ने, प्यारे ने, है ना। अचानक जदों एक वारी सामने आउंदे तो इंज लगदा दिल ते ठार ठंड पै गई हुई है ना।
1: जी
0: सो लाणा शब्द सुन के बहुत वधिया लग्या, और गुजारिश कर दी अपने सुनने वालों नूं कि इदां दे शब्द तुहानूं भी लभण तो जरूर लिख के भेजो। जिंदा रहणगे, समय के नाल नाल तब्दीलियां आउंदियां रहिंदियां, पर साडी कोशिश है कि साडी विरासत ये जिहड़ी बोली है ये वो शब्द जिहड़े उहनां नूं भी जिउंदे रखिए, नाल नाल तोर सकीए, है ना।
1: बिल्कुल
0: बाकी इन्होंने कुलदीप माणक होरां नाल मुलाकात की गल की है जी। कुलदीप माणक होरां दी एक इंटरव्यू एक मुलाकात साढ़े कोल मौजूद है जी, गाए बगाए जरूर कदे ना कदे नेड़ले भविष्य तुहानूं सुणावांगे किसी ना किसी प्रोग्राम दे विच।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया बलविंदर बिल्ला माधोपुरी जी साढ़े प्रोग्रामां नूं पसंद करन वास्ते और अपनियां खूबसूरत भावनावां दा इजहार करन वास्ते।
1: हुण वारी आ गई है जी ईमेल्स दी। जी ये सब तो पहली ईमेल शामिल कर रहे हैं सुल्तान सिंह तरड़ होना दी, हनुमानगढ़ राजस्थान तो।
0: जी
1: कहिंदे कि 90 साल आकाशवाणी दे पूरे होण ते बहुत बहुत शुभकामनावां
0: वाह वाह वाह वाह, साडे
1: जी।
0: वल्लों भी आप जी नूं बहुत बहुत शुभकामनावां जी। 1 साल तो प्रोग्रामां दा, खास प्रोग्रामां दा सिलसिला जारी है, और ये 8 जून नूं, जून दा महीना भी चलते रहणगे प्रोग्राम, वैसे
1: बिल्कुल जी
0: 8 जून 2026 नूं 90 साल पूरे हो जाणगे आकाशवाणी दा प्रसारण देश विच शुरू होया, जिहड़ा कि 1936 दे विच शुरू होया सी।

0: मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है।
1: आज दुनिया विच लगभग 30 करोड़ तो वध लोग नियमित तौर ते योगा करते ने। योगा नु करन वाले लोगों का अनुभव आम तौर ते बहुत सकारात्मक होंदा है। दुनिया भर के लोग जिहड़े योग नाल जुड़े ने वह महसूस करते ने कि मानसिक तनाव ते चिंता तो उन्होंने मुक्ति मिली है। शरीर विच लचकता, ताकत ते ऊर्जा का प्रवाह चलिया है। नियमित योग करन नाल डूंगी ते वधिया नींद का अनुभव होंदा है ते तनाव भरे माहौल विच भी मूड खुशी भरिया रहिंदा है। साल 2015 तो बाद पूरी दुनिया विच हर दिन योग हरमन प्यारा हुंदा जा रहा है। पूरी दुनिया विच योग दी लोकप्रियता नूं वधाउण बारे राष्ट्र पद्धर दे योग सिख्यक रोहित कौशिक महसूस करते ने।
2: आपको पता है योग हमारा अनादिकाल से सनातन का एक कर्म है और योग को भगवान शिव के रूप में सबसे पहले माना जाता है और आज जन जन तक पहुंचाने का श्रेय परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव महाराज जी को जाता है। पूरे विश्व में अगर इसको योग में विश्व बनाने का प्रकल्प अगर कहें तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने यूएनओ में जाकर योग दिवस के रूप में 177 कंट्रियों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया। आज पूरे विश्व में करीब 200 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और मैं ये कहूँ कि योग अब केवल भारत की एक विधा तो है लेकिन पूरे विश्व में सब इसको अपनाते हैं। अब तो पूरा विश्व का हो गया है जी।
1: योगाचार्य रंजना छाबड़ा महसूस करते हैं कि भारत नालों ज्यादा ये दूजे मुल्कां विच ज्यादा हरमन प्यारा है।
3: ये ज्यादा पॉपुलर उत्थे ही ज्यादा हो रहा है एक्चुअली क्योंकि इत्थों जिहड़े अपने देख के उन्हां दा आपां कम घट फॉलो किया है उत्थे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। उत्थे ज्यादा इनोवेशन भी कर रहे हैं पर कुछ हद तक इनोवेशन ठीक होंगी है लेकिन कुछ उन्हां दा रूप भी बदल रहे हैं। ता मैं तो ये देख रही हूँ कि आपने उल्टा ज्यादा भारत दे विच आपां नूं इसनूं इन्ना मजबूत करना चाहिए कि इहनूं कोई बदल ना सके। ज्यादातर यूएस दे विच ऑस्ट्रेलिया दे विच मैं गई हाँ तो उत्थे भी देखिया थाईलैंड दे विच भी बहुत पॉपुलर है योग। मतलब जिहड़ियां कंट्रीज़ दा मैं देखिया क्योंकि उत्थे लोग ज्यादा उसनूं अप्रोच करते हैं उत्थे जगह जगह सेंटर भी तुहानूं देखण नूं मिलणगे।
1: अज योग सिर्फ एक रूहानी अभ्यास नहीं बल्कि विश्व पद्धर ते एक बहुत वड्डा उद्योग बन चुका है। रिपोर्टां दे मुताबिक ग्लोबल योग मार्केट 2025 तक 66 बिलियन डॉलर तो वध होण दा अंदाजा लाया जा रहा सी। योग मैट, कपड़े, होर समान दी मंग फैशन इंडस्ट्री विच बहुत तेजी नाल वध रही है। इस बारे की सोचते ने राष्ट्रीय पद्धर दे योग सिख्यक रोहित कौशिक।
2: योग देखो एज ए योगा टीचर मैं अगर बात करूं तो उद्योग के रूप में मैं एक योगा टीचर हूं, मैं क्लासेस देता हूं तो उसका मैं पेमेंट लेता हूं। आज आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में विदेशों में भी योगा स्टूडियो हैं, योगा सेंटर हैं। तो वो योगा टीचर एक एक व्यक्ति जो योगा टीचर है उनके सेंटर पे कम से कम 100 से 150 क्लाइंट आते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं प्रशिक्षु बोल सकते हैं वो आते हैं और उनकी अगर एक फीस एक व्यक्ति की 1000 रुपये है तो करीब 100 से 150 अगर एक ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच रहे हैं, योगा सेंटर पे पहुंच रहे हैं, योगा स्टूडियो में पहुंच रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए है और उद्योग की श्रेणी में ये बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसे भारत में अगर हम बात कहें जब योग करने के लिए उसके लिए क्या आवश्यकता है, हमें योगा मैट की आवश्यकता है। तो जैसे पानीपत है, पानीपत में बहुत इंडस्ट्रीज हैं जो योगा मैट पर काम करती हैं, भारत उसका निर्यात करता है तो योग उद्योग की श्रेणी में भी बहुत आगे जा रहा है।
1: डिजिटल क्रांति कारण योगा एप्स ते ऑनलाइन क्लासां दा करोड़ां रुपए दा कारोबार खड़ा हो गया है। योगा एप्स बारे मोनिका शर्मा दस रहे ने।
4: यूट्यूब ते बहुत सारियां वीडियोस मिल जानगियां जिसनूं देख के तुसी योगा सीख सकते हो।

0: कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक मतलब बहुत जरूरी चीज है कि बच्चा जड़ा है अपनी हेल्थ वास्ते कॉन्शियस होएगा, उस दे नाल ओदा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो बच्चा जड़ा है ना फिर नशे वाले पासे नहीं जाएगा।
1: योगा ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰੱਬ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਸਿਰਫ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਬਰੋਨ ਜੇਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਲੋਨ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ?
2: ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੰਗਿਆਨ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੂੰ ਕਿ 2020 ਮੈਂ ਯੋਗਾਸਨ ਖੇਲ ਕੀ मान्यता खेल मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और आज योगासन खेल के खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष में करीब, मैं आपको ऑथेंटिक खिलाड़ी बता दूं तो करीब 10 लाख की संख्या पहुंच चुकी है और जिला स्तरीय चैंपियनशिप फिर स्टेट फिर नेशनल, ये तो एक योगासन की चैंपियनशिप होती है लेकिन जो नेशनल गेम्स में जाते हैं बच्चे, खेलो इंडिया में जाते हैं, अस्मिता वुमेन्स लीग ऐसे उपक्रम भारत सरकार के माध्यम से हो रहे हैं आज ये सारी चीज, और इन बच्चों को जॉब भी मिल रही है, सरकारी जॉब्स मिल रही हैं, पुलिस कंट्रोल बोर्ड में भी इन बच्चों को प्रमोशंस हो रहे हैं। अभी प्रयास है CBSE PISC बोर्ड, इन्होंने योगासन खेल को अडॉप्ट कर लिया है, इनका सिलेबस अपना लिया। योगासन भारत एक संस्था है जो भारत राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है और अभी वर्तमान में मैं आपको बताऊँ कि पिछले वर्ष एशियन चैंपियनशिप भारत में आयोजित हुई जिसमें करीब 21 कंट्रियों ने भागीदारी करी और उसमें 83 गोल्ड मेडल थे और 4 सिल्वर मेडल थे, टोटल 87 गोल्ड मेडल वो मेडल थे जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण 15 अगस्त के भाषण में लाल किले पे भी आमंत्रित किया और सरकार की तरफ से भी उनको कुछ सहयोग किया और बच्चों को प्रमोशन हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि 2026 में जो हमारे एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें डेमो में सम्मिलित किया है, मेडल टैली में कॉमनवेल्थ और एशियन में 2030 में आ जाएगा और योगासन खेल सबसे लोकप्रिय खेल बनने जा रहा है। जैसे क्रिकेट की लोकप्रियता है ऐसे ही योगासन खेल की लोकप्रियता पूरे विश्व में हो जाएगी।
1: योग के प्रति जागरूकता पैदा करने लिए समाज विच स्वय सेवी संस्थावां भी बहुत वधिया उपराले कर रही ने। ये संस्थावां पिंडां शहरां स्कूलां झुग्गियां झोंपड़ियां विच मुफ्त योग कैंप लाउंदियां ने। जिहड़े लोग महंगे जिम जां फिटनेस सेंटरां दी फीस नहीं दे सकते उन्हां नूं ये संस्थावां मुफ्त विच योगा दी सिक्ख्या दिंदियां ने। अजकल दे नौजवानां नूं नशियां ते मानसिक तनाव तों दूर रखण लई विशेष मैडीटेशन सैशन भी आयोजित कीते जा रहे ने। इस वैसे भी संस्थावां सिर्फ योग सिखाउंदियां नहीं सगों योग गाइड ते ट्रेनर भी तैयार कर रही ने। नौजवानों नूं मुफ्त ट्रेनिंग दे के सर्टिफिकेट दिते जांदे ने जिस नाल वह अपने लिए रुजगार भी पैदा कर रहे ने। की कहिंदे ने योगाचार्य रंजना छाबड़ा इस बारे?
0: बहुत लोग कर रहे ने, बहुत सारी संस्थावां कर भी रही ने लेकिन जिहड़े तो योग दीआं संस्थावां जिवें मान लो पतंजलि कह लो, आटो क्लीनिंग वाले कह लो, वह तो कर ही रहे ने लेकिन जिहड़े देखदे आ कि आपां नॉर्मल जिहड़े मान लो क्लब्स कह लो वो सिर्फ एक औपचारिकता दे रूप से कुछ प्रोग्राम्स करवाते हैं ते इहदे वास्ते, लेकिन वो चलो ठीक है उन्ना ही काफ़ी है, होर उन्हां नूं करना चाहिए। स्वयं सेवी संस्थावां जिहड़ियां हैगियां ने वो सिर्फ आपदे प्रोग्राम नूं हैंडल करना भी दिखाना कि असीं ये प्रोग्राम कर रहे हैं।

0: कोई क्लब है या कोई होर है, लेकिन जड़िया योगदान जुड़िया संस्थावां नू अपना फर्ज पूरा निभा रही ने।
1: योग मन दे अंदर दे रौले नू शांत करके तुहाडे जीवन नू बदल दिंदा है।
2: आज भाग दौड़ भरी जिंदगी है, और बच्चे की भी अगर हम बात करें, जिस मासूमियत से आपने 20 साल पहले बच्चों को देखा होगा बड़े सहज भाव से, आज बच्चे भी चिड़चिड़ापन में हो जाते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सभी बच्चे मोबाइल और लैपटॉप से जुड़े रहते हैं। वो खाना कम खाते हैं लेकिन मोबाइल और लैपटॉप से ज्यादा जुड़े रहते हैं, जिससे कि वो उनमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा होता है, तनाव होता है, धैर्य नहीं होता, उन्हें काम करने की शक्ति कम हो जाती। लेकिन उसका एक समाधान योग है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को सहज और शांत कर पाएंगे।
1: योग मैट ते योग आसना दे नाल बिताया होया हर पल तुहाडी जिंदगी नूं चानण दे नाल भर दिंदा है।
0: जीवन ही बदल जाएगा जी पूरे। तुसीं हर व्यक्ति दी लाइफ दा कुछ एम हुंदा ना, आपां कुछ अचीव करना चाहुंदे या अपने अंदर कुछ प्रतिभा छुपियां हुंदियां ने जिहदा आपां नूं पता ही नहीं हुंदा कि आपां एवें भज्जा दौड़ी करे जा रहे हैं, अपने स्ट्रेस ले जा रहे हैं ना। तो योग स्ट्रेस नूं वी मैनेज करना सिखांदा अज दी लाइफ दे विच, तुहाडे गोल नूं बिल्कुल क्लीयर करदा कि तुसीं जिहड़ा अपनी लाइफ दे विच गोल लैके चल रहे हो उहनूं अचीव किस तरह करना है, इह वी योग सिखांदा है। प्लस तुसी उसनू अचीवमेंट नू हासिल करने वास्ते किदां तुसी करोगे, तुहाडा मतलब फिजिकल लेवल ते तुसी प्रिपेयर होगे, मेंटल लेवल ते तुसी प्रिपेयर होगे, इमोशनली तुसी इन्ने स्ट्रोंग हो जाओगे, तुहानू कुछ भी इधर उधर नहीं दुनिया कर पाएगी।
1: योग दा हर डूंगा सा शरीर विचों नकारात्मकता नू मुका दिंदा है।
3: योग जिंदगी जीउण दा ढंग सिखाउंदा सानू। आपां बिलकुल सुंदर आए सी ते सुंदर बना के ले जाणा अपने शरीर नू। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਔਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਡੇਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ।
1: ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਈਏ। ਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग की

0: जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क रंगों का है। मन चाहे रंगों से तो तस्वीर, अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, किसने रोका है। जी हाँ दोस्तों, साड़ी सच्चाई, साड़ी अच्छाई साढ़े ही हथ विच है। जेकर असी चंगा बोलांगे, चंगा सोचांगे, तो सानू सब कुछ चंगा ते वधिया ही नज़र आएगा। इदा है, इवें ही साढ़े कॉलर्स ने आकाशवाणी जलंधर नू इन्ना प्यार करते ने, इन्ना प्यार देंदे ने, ते उसे प्यार सदका ही साढ़े प्रोग्राम दे विच खूबसूरत फरमाइशां दा सिलसिला चलता है। ते अगली फरमाइश कौन ते केड़ी लेके आए ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं राकेश कुमार बोल रहा जी, मलेरकोटले तो।
0: जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं राकेश जी तुहाडा।
1: धन्यवाद जी, तुहाडा भी स्वागत है जी।
0: जी की कर रहे सी इस वेले राकेश जी?
1: फैक्ट्री काम करते हैं मैडम जी।
0: अच्छा, काम करते करते
1: आवाज आ रही होनी है।
0: हां जी बिल्कुल, काम करते करते रेडियो लगाया होया।
1: हां जी हां जी हां जी, चाह पीते बिंदे फोन लग गया।
0: चाह कल्ले कल्ले चाह पी ली, देख लो सानू पुछया भी नहीं।
1: सॉरी मैडम जी, कोई अगली बार आना फिर जरूर पुछांगे।
0: ठीक है जी, असी पूछ लेने हैं जी, तुहानू गीत दस दियो, केड़ा सुनोगे? लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी आवाज़ां दे विच रोटी फिल्म दे विचों गीत तुहाडे तक पहुंचा रहे। शुक्रिया कॉल करन दे लई।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343 ਅਸ਼ਾਰੀਆ 6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे।

0: ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। साथ ही व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग बढ़ेगा। अमेरिकी राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्री आज ही नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने मियामी में मीडिया से बात करते हुए भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार देश बताया। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल के कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैठक में बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए। आओ हुन सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

0: बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी च। साडे इस प्रोग्राम च बहुत सारे स्रोतियां ने कई मैसेजेस भेजे ने, तुसी भी साडा नंबर नोट कर लो 9465536077। इस नंबर ते मैसेज करके तुसी भी अपनी पसंद दे गीत सुन सकते हो। तो देखते हैं जी अज सानू किदा मैसेज आया है, तो किस किस गीत की फरमाइश आई है। तो पहला मैसेज आया है जी गाँव हांडी खेड़ा जिला सिरसा तो राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का। अगला मैसेज लिखते ने दीवाना जमानिया गाजीपुर यूपी तो सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। नाल ही गमहरिया जमशेदपुर तो बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। अगला मैसेज आया जी जय विहार नजफ्फरगढ़ तो लिखते ने शाहरुख फारूक शबनम अते शहनाज। अगले साथी ने मलकीत मेन बाजार गुनियाना मंडी तो, जोगिंदर सिंह पिंड सीविया तो, सुरजीत सिंह पिंड ख्यालीवाला तो, अते कलविनत सिंह मलोट तो। अगले साथी ने जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार अते नरगिस खातून। अगला मैसेज लेने आ, ए मैसेज है जी मंडी डबवाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग अते। अगला मैसेज गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियस थांदी, भामिका अते वाणी थांदी दा। ये लिखते ने पिंड डाखाना टोरोवाल बलाचौर नवाशहर तो। अगली फरमाइश है गंजरुंडवारा तो शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी अते कलीम अंसारी दी। अगला मैसेज लिखते ने मलियान सरधना मेरठ तो अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन, दिग्दर्शन। ते अगला मैसेज है जी पिंड बसौली नेड़े लालरू मंडी तो सूबेदार साधु सिंह पट्टी, आरव पट्टी, सकीला पट्टी, कुलवंत कला अते टीनू पट्टी दा। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ हरभजन मान दी आवाज़ विच।
1: बेड़ी दा पूर तरिंजन दियां कुड़ियां

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है पिंड तेजा मोरी अंबाला तो बंसी लाल संधू कबीर जयजबीर संधू वरनीत अते पवनीत कौर संधू दा अगला मैसेज लिखते ने गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र तो लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पना ताई लोखंडे शैलेश प्रतीक्षा स्वरप्रेल अते रक्षता लोखंडे अगले साथी ने झज्जर हरियाणा तो बिट्टू भाटिया ते रीटा भाटिया ते नाल ही अगला मैसेज आंदा है जी शिवाजी नगर वडली देशमुख तो राजेश खोबरखेड़े शिव सागर खोबरखेड़े इंदिरा बाई अते छकुली ताई खोबरखेड़े दा अगला मैसेज लिखते ने पिंड सदोहा तो जगराज सिंह कणकवालिया गंगा राम राजेश्वर सोनू सुखदेव सिंह अरविंदर कुमार जलंधर तो गांव जुगड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर वांगड़ गुरमेजो गौरव परवीन युगम अते विरेन नरेंद्र चावला पिंड मुकरौंपुर तहसील बसी पठाना जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो हरीश प्रिंस मुस्कान महक तनमीत मनी अते पीयूष नेहा ते ओम अगला मैसेज शामिल कर दिया है मैसेज आया जी मलेका सिरसा तो राम स्वरूप लुहानीवाल परमजीत पम्मी अगला मैसेज लिख देने रमी हैबोवाल तो लुधियाना पंजाब तो रमी हैबोवाल लुधियाना पंजाब तो ते अगला मैसेज है जी जलालदाबाद वैस तो सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी अते निमित आहूजा चकला बाजार समाणा शहर तो लिखते ने पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू स्माइल खुशदिल हसमुख लाल जिंदल संजीव सुनीता बंटी जिंदल आरजू मह खुशदिल ते आर्यानगर कोहका पिलाई तो उत्तम सिंह जंगेल मोरम मोरस जंगेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंगेल अते नंदनी जंगेल अगला मैसेज शामिल कर दिया है ये मैसेज आया जी मलोट तो नथुराम शर्मा ललित शर्मा इंदिरा शर्मा सुरेश शर्मा दा ते श्री फतेहगढ़ साहिब तो लिखते ने रामनाथ अतापुर सुखमनजीत सिंह सहजप्रीत कौर आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ मास्टर सलीम अते गुरलेज अख्तर दी आवाज़ विच

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

हनुमानगढ़ तो सुल्तान सिंह, कपिल देव तरड़, हिमानी झाखड़। पिंड कबूल शाह कुब्बन, ज़िला फाजिलका तो बलतेज, नवजोत, हरमन, हैरी, हैप्पी। मलोट कला तो मनप्रीत सिंह, परमजीत, पूर्बा, कक्कड़वाल, पुल, तूरी तो। जगाधरी ज़िला यमुनानगर हरियाणा तो विनय मोहन खार, मीनाक्षी, प्लोमा अते डॉक्टर ईशानी। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक अते वंश बट्टा। करनाल तो लिखते ने सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा। ते अगला मैसेज लिखते ने हाजीपुर तो विजय, सोनूप्रीत, तनु, गणेश, ग्री। अहमदगढ़ मंडी पंजाब तो मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समा, हीना, शकीला, जैस्मीन, रजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सूरज, मोहम्मद जावेद अंसारी। शाहजी नगर देगलूर ज़िला नांदेड़ महाराष्ट्र तो संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या अते सविता भाकरे। अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, ये सब लिखते ने जी बुर्ज हनुमानगढ़ ज़िला फाजिलका तो। ते अगला मैसेज है ज़िला मुरादाबाद तो पिंड दूल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक अते बलवीर सिंह दा। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां सतिंदर सरताज दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी, ते इस प्रोग्राम च सानू बहुत सारे स्रोतियां ने कई मैसेजेस भेजे ने, अपनी फरमाइश कीती है कि वह केड़ा गीत सुनना चाहते ने। देखते हैं कि अगला मैसेज कितों आया है। अगला मैसेज आया जी धनौरी तेलीवाला तो निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबूदा। अगला मैसेज लिखते ने संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौंक गुराया जलंधर तो। अगला मैसेज लिखते ने सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान अते प्रतीक चौहान। पिंड जाफरा जिला फाजिलका तो फलक सिंह, राजू, बाबू, सोनू, अमनदीप, दतरेंगी तो भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा अते रुद्र वर्मा। उत्तम नगर दिल्ली तो बोधवराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश चौधरी, जुल्फिकार अली, चक लालेका, बहावल नगर तो। अगला मैसेज आया जी ग्राम नगर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ तो बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा अते आराध्या साहू दा। गांव जाखोत राजस्थान तो शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार अते कुमारी पूजा खटक, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल। ए लिख देने जी कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो। जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान इते गर्वी, सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव अते अर्पिता। ए मैसेज आया जी डाबकी रोड अकोला तो। बठिंडा पंजाब तो प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, तपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन अते अभिजोत, आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग। ए लिखते ने जी सहारनपुर तो। अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी सहारनपुर तो दाऊद सराय थे। राम दवेरा तो दिनेश चौहान, डांगरी तो बाबू राम जयपाल, खलीफो की बावड़ी तो खुदा बख्श खलीफा, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान तो बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। मनीला फिलिपिन तो लिख देने मदन मोहन लहर, सरबजीत लहर, संजू लहर, नितिका लहर, अजय, एंजल, अर्नव लहर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेहराज जहान, आजाद नागार्जुन, हरिद्वार उत्तराखंड तो। सोजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान तो। लादुका मंडी तो लिख देने टिंकू गिरिधर, सुमन गिरिधर, दिया गिरिधर, नमन गिरधर, संजीव गिरधर अते उर्मिला गिरधर।

बेअंत सिंह लिख देने जलाल दीवाल ज़िला लुधियाना। तो अगला मैसेज है जी, पंचकुला तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधिका भविक ढींगरादा। चंडीगढ़ तो लिख देने निश्चल ऋषि, संजू ऋषि, सौरव ऋषि, कृतिका ऋषि, लड्डू ऋषि, अमरजीत, नीलम, राहुल अते ऋषिका ऋषि। पिंड हीरा वाली फाजिलका तो सुभाष गोदरा, बिमला गोदरा, इंदू पार्वती, हिमांशु गोदरा अते मनदीप सिंह दीपा जलाल दीवाल ज़िला लुधियाना। तो आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां नवराज हंस दी आवाज़ विच।

अर्पित अभिनव सत्य कनु रोहिणी आशना दीक्षा अर्पित शाही बिश्नोई दा हरिपुरा अबोहर तो। ते अगला मैसेज लिख देने, वैष्णव कलोनी सनावत तो मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खन्नी मोहम्मद अल्तमश खन्नी रमेश गौड़ अते मोहम्मद शदाब खन्नी। आओ फिर एना सब दी प्रसन्नदायक प्रोग्राम दा एक अखीला गीत सुनदे हां रंजीत बावा दी आवाज़ विच। इस दे नाल ही मैनू निधि चुगनू अज दा ए प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करन दी इजाज़त देना। नमस्कार।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम

0: से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग मिडिल सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए। आओ हुन सुनदे आ प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: कमी नहीं आएगी, तो दोनों पासों से बचा रख लेंगे।
1: जी, तो तुसी एक लड़की जो प्रेग्नेंट हुंदी है उसनों की सलाह देना चाहोगे कि शुरू तो लैके डिलीवरी तक वो किहड़ियां गल्लां दा खास ख्याल रखे?
0: उन्होंने असं यही कहना चाहवा अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखन,
1: जी
0: अपने रेगुलर चैकअप करावे, एटलीस्ट 4 चैकअप्स तो जरूर पूरे टाइम तक करावे। जो कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई स्वेलिंग ऑफ द फेस आ जाती है, कोई हैंड एंड फीट्स की आती है, कोई दिल की धड़कन बढ़ती है, कोई घबराहट होती है, कोई मुँह चो नक् चो कोई खून आता है, या कोई उन्होंने लगता कि बच्चे का जी मूवमेंट है वो घट गई है,
1: जी
0: ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखे। जो उसको किसी वाले भी चक्कर आते हैं तो हैडेक कॉन्टीन्यूअस रहती है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेगी तो एकदम इनफॉर्म करे डॉक्टर नूं ते ताकि वो अर्ली उसका ट्रीटमेंट कर सकन।
1: जी ते रेगुलर चेकअप इस विच बहुत अहम भूमिका निभाउंदे
0: बहुत
1: ने।
0: अहम
1: ते जदों भी असी डॉक्टर के कोल जाने आ तां नेक्स्ट टाइम डॉक्टर सानू खुद ही दस दिंदा है कि तुसी नेक्स्ट टाइम कदों आना है। कई वारी बहुत महिलावां इग्नोर कर दिंदियां ने, नहीं जा पाउंदियां, कि इस प्रति भी साडे सुनण वालों तों कुछ दसणा चाहोगे?
0: हाँ जी, रेगुलर चेकअप बाद च भी कहते पोस्ट नेटल टाइप के भी बहुत जरूरी है। कई बार इस तरह होंगे, कई बार पेशेंट्स नूं पता ही नहीं होंगे कि उन्होंने आफ्टर डिलीवरी कई डिप्रेशन चले जाते हैं, ये सब तो वड्डी प्रॉब्लम आती है।
1: बिल्कुल
0: पता नहीं क्यों अपने आप में कट ऑफ समझती हैं कि मैं घर ही रह गई, मैं अंदर ही अंदर रह गई, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बेड रेस्ट भी दसिया होंगे भी थोड़ा, तो
1: जी
0: वो सोचते भी सानू सी पूरी बाकी लाइफ तो साड़ी नॉर्मल लाइफ जी बिल्कुल कट ऑफ हो गई है, तो असं बाकिया वांगू विचर नहीं सकते।
1: जी
0: डिप्रेशन सब तो पहला ये हो जाता है पेशेंट, पर उन्होंने काउंसलिंग नाल ठीक किया जा सकता है।
1: जी
0: फिर उन्होंने कई दफे डाइट बहुत अच्छी लै ताकि बच्चा भी थोड़ा फीड लेगा, तो बच्चे भी थोड़ी खुराक जो दुध पिएगा वो जाएगी। इस
1: बिल्कुल
0: करके खुराक और उन्होंने मेंटल हेल्थ बारे बहुत ज़्यादा अवेयर करीदा असी, और माँ अपनी सेहत बारे सब तो पहला खुराक और सेहत और अपनी डाइट बारे पूरा करेगा ना, ख्याल रखेगी तो बच्चे भी पूरी तरह संभाल सकेगी।
1: जी जदों इहो जी कि प्रॉब्लम किसी महिला नूं हो जाए तो तुसीं दस्सिया कि कुछ समा पा के जेकर वो दोबारा गर्भ धारण करदी है तो वो सुरक्षित हुंदा है, पर फिर भी एक महिला दे मन दे विच डर जरूर आ जांदा है कि दोबारा तो नहीं हो जाएगी मैनूं ये प्रॉब्लम?
0: इस तरह से पूरी तरह गाइड करते हैं
1: जी
0: पेशेंट नूं, जे तां तुसीं किन्ने साल दा तुसीं गैप पाना चाहते हो उस हिसाब से, अजकल बहुत कुछ है, कोशिश करते उन्होंने सारी तरह समझा दी, उसकी अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन असी उन्हें सुजैसट करते हैं कि तुसीं आ लो तो ये थोड़ा बचाव हो जाएगा।
1: जी असी ये पूछना चाह रहे थे कि जेकर ये फिस्टूला किसी महिला नूं पहला है, दूसरे प्रेगनेंसी दे टाइम संभावना होंदी है या इलाज तो बाद दोबारा नहीं हो पाउंदा?
0: इलाज तो बाद वैसे तो नहीं होंदा, मोस्ट
1: जी
0: ऑफ द केसेस कभी नहीं होंदा, क्योंकि वो अच्छी तरह रिकवर कर जाती है पेशेंट।
1: जी
0: तो ये है कि उसनों पूरा असं अलार्म कर देता कि तुसी जदों भी थोड़ा प्रेगनेंसी होए तुसी इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल ही डिलीवरी कराओ, घर ना रहो और थोड़ी जी लेबर पेन ज़्यादा देर ना रहे,
1: जी
0: ठीक है ना। जदों शुरू होंगी है लेबर पेन उस वेल तो तुम हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट करो और हॉस्पिटल एडमिशन करवा लो, तो एडमिट होने तो सारा कुछ ही कवर अप हो जाता, सारा लुक आफ्टर हो जाती है।
1: डॉक्टर हरपाल होना ने यह सुनेहा दे दिता कि जदों भी लेबर पेन होंदी है तो उसनों बहुत लंबे समय के लिए खिंचया ना जाए, ये भी एक कारण बन सकता है जितों तक संभव हो सके उसनों जल्दी डॉक्टर को पहुँचा जाए तो जल्दी उसे डिलीवरी कराई जाए, तो हर एक छोटी तो छोटी चीज़ की जाँच की जाए। डॉक्टर साहब हुण आखिर दे विच हर माँ की सुरक्षित डिलीवरी होवे इसलिए तुसी साडे सुनण वालियां नूं की सुनेहा देना चाहोगे?
0: असी तो यही सुनेहा दे सकते हैं कि भी तुसी एक तो सेफ प्रेगनेंसी होवे, जिसले बच्चा ठहर जाए उस वेले तुसी प्रॉपर पूरा चेकअप कराओ,
1: जी
0: इस पासे इग्नोर ना करो, क्योंकि ये इग्नोरेंस नाल काफ़ी सारियां कॉम्प्लिकेशन आ जाएं,
1: बिल्कुल
0: तो जे प्रेगनेंसी सेफ होगी तो डिलीवरी भी सेफ होगी। उन्होंने वो बारे भी सारा पूरा डिटेल च मैं दस दिता है
1: जी
0: कि अपने हॉस्पिटल च डिलीवरी करान, घर बैठे ना रहन, किसी के मगर ना लगन के भी तुसी हाँ जी नहीं कोई नहीं इदा नहीं उदा नहीं, बस पेशेंट शुड बी वेरी केयरफुल कि मैं हॉस्पिटल ही करानी है डिलीवरी।
1: देखो पूरे विश्व दे विच किन्नी ये समस्या कॉमन होएगी कि इस दे प्रति सानू अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते दिवस मनाउण दी लोड़ पै रही है। सो असी शुरू दे विच गल कीती सी कि ऑब्सटेट्रिक फिस्टूला, चाहे बहुते लोकां ने नहीं ये नाम सुनिया होएगा पर हुण पूरी गलबात सुन के साडे सुनण वाले जरूर समझ गए होणगे कि हाँ इस समस्या तो असी वाकफ सी पर इसका नाम शायद सानू नहीं पता सी। सो डॉक्टर हरपाल जी, तुसी बहुत ही विस्तार सहित साडे सुनण वालों नूं समझाए, बहुत चंगी तरह समझाए, ते इस बहुत ही वडमुली जानकारी देने दे लई प्रोग्राम च आउण दे लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्सटेट्रिक फिस्टूला दे कारण ते इलाज दे बारे जिहड़ी गलबात डॉक्टर हरपाल कौर होरां ने सानूं दसी है, उन्हां नाल गलबात कर रहे सन पूनम ते ज्योति जी। बहुत सारियां जिहियां समस्यावां जे कई वारी औरतां नूं पता ही नहीं हुंदा, है ना, ते जेकर असीं इन्हां तों सुचेत रहिंदे हां और समें

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: लो जी, इन्हां सुनेहियां तों बाद एक बार वापस आ गए हैं फिर तो लै के श्रोतियां दा मनपसंद सिलसिला झांजरां दे बोर। और बहुत सारियां फरमाइशां साडे कोल पहुंचियां ने जी, वारी वारी करके उन्हां नूं पूरी करन दी कोशिश करांगे कि सब दी फरमाइश जिहड़ी है पूरी हो जावे।
2: बिल्कुल।
1: ते पहली फरमाइश आई है जी, कहिंदे डॉली गुलेरिया दी आवाज़ 'च गीत सुना दिओ। मलोट कैंप तों आए ने जी सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह विवान, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर ते रमेश मिगलानी। श्री गंगानगर तो ने जी बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा
2: जी। ते सी गीत दी फरमाइश लई मेरे कोल आई है फरमाइश पिंड रायपुर डब्बा तो फौजी मक्खण सिंह, बूटा बल्ली, शनि हितेश, जशनप्रीत सिंह, सुप्रीत कौर, नन्नू डब्बू, दब्बू कुलविंदर कौर, नीलम ज्योति, पूरा लद्दड़ परिवार, पिंड बंगाला जिला फाजिलका तो जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल, कमलदीप गिल, SK शर्मा, जगतार टेलर, बागा पुराना तो सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा, तेग फतेह सिंह, जसगुण रखरा। ते आओ सुनदे इन्हां सारयां दी फरमाइश ते डॉली गुलेरिया दा गाया ए गीत।

0: जी ज्योति, इस गीत तो बाद अगली फरमाइश असी अपने श्रोता लैके हाजिर होए हैं। फरमाइश आई है जी कोटली कला तो, ये भेजण वाले ने यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह, गुरजोत सिंह, पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो सुरजीत सिंह, गुरतेज सिंह, सुखविंदर कौर, मनप्रीत कौर, गुरविंदर पाल कौर, बलजीत सिंह, तो इन्हों का पूरा परिवार। शेरगढ़ तहसील मलोट तो बलराज राम कालवा, भोला राम, बेबी लक्ष्मी, मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह, हरप्रीत ते शिवराज मान, इन्हां सारिआं ने जी फरमाइश कीती है गैरी संधू दे गाए हुए गीत दी।
1: ते आओ सुनते हैं जी गैरी संधू की आवाज़ से गीत।
0: जी

0: ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ
1: ਜੀ
0: ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਖਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਾਂ ਦੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੀਣ ਲਈ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
1: ਜੀ
0: ਔਰ ਅਨੁਰਾਧਾ, ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ
1: ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।
0: ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
3: ਨਮਸਕਾਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
4: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
3: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई।

0: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण पेश है साडे अज प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 1:10 हो रहे ने। आ हुन सुनदे हां प्रादेशिक खबरां।

प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई, ते इस प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर करते हैं फिल्म भाग मिल्खा भाग दा। इस गीत तो आवाज़ देती है जावेद बशीर ने।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ठीक है, तुहाडी लॉटरी निकली है।

0: टिकट खरीदी सी? नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर दे के पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
1: फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनदे हां सोना महापाता दी आवाज़ विच, फिल्म दा नाम है फुकरे।

0: और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएस कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकरूरी नामे तकसीम किए गए। आरसीएस कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है, जो बर वक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है।
2: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स, मशीन लर्नर्स, लर्निंग इंजीनियर्स, क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स। India is preparing our young people to provide leadership in that area.
1: बाद में उन्होंने 93 नए मुलाजमत हासिल करने वालों को तकरूरी नामे सौंपे। पटियाला में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 188 नए उम्मीदवारों को तकरूरी नामे सौंपे गए। पेट्रोलियम कुदरती गैस और सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। 19वें कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका अहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरनामे एक मुकद्दस फरीजे का आगाज है। जनाब गोपी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह अपनी तवानाई कौमी तामीर में इस्तेमाल करें और विकसित भारत के नस्बुलैन को पूरा करें। पार्लियामानी उमूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में आईसीएफ रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोजगार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलों में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज़ ने 12 लाख रोज़गार मुहैया कराए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत दी जाएगी। तालीमी महकमे की एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर साल कम से कम 25,000 असातिज़ा को मुलाजमत दी जाए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तकर्रुरी से मुतालिक नोटिस हर साल जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। उधर वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वजीर आला के ऐलान के बाद असातिज़ा की तकर्रुरी के इम्तहान TRE-4 के चौथे दौर से मुतालिक खदशात अब ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने इत्तला दी कि महकमे तालीम जल्द ही खाली असामियों का जायज़ा लेकर मुलाजमत के लिए ताज़ा दरख्वास्त देगा। बिहार हुकूमत ने आज 21 जून को होने वाले नीट UG के फिर से इम्तहान में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में नीट के सभी उम्मीदवारों को सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन की हुई नकल हासिल करने की आखिरी तारीख 24 मई तक के लिए इजाफा कर दिया है। इससे कबल इसकी आखिरी तारीख आज यानी 23 मई तक थी। CBSE ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक आने और गैर कानूनी तौर पर वेबसाइट में मुदाखलत करने की वजह से यह फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि तलबा जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल होने के बाद 2 दिन तक फिर से जायजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोज़ा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो अमरीका और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत

0: बहरुलकाहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गौर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आलमी सेहत तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो में एबोला मुल्क भर में फैल जाने के अंदेशे का इजहार किया है। इस तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसस का कहना है कि इस वक्त इस वायरस के कौमी सतह पर फैल जाने का बहुत ज़्यादा, इलाकाई सतह पर ज़्यादा और आलमी सतह पर फैलने का कम अंदेशा है। आज शाम लखनऊ में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज़्यादा लोगों को तकर्री नामे सौंपे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रोशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की किस्म के खतरे को बहुत ज़्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरानी प्रोग्राम जारी है ते प्रोग्राम च उसे गीत नू अगे वधाउने आ जी जो गीत असी छड्या सी। फिल्म है फुकरे ते गीत है अंबर सरिया। इस गीत नू आवाज़ दिती है सोना सोनम महापात्रा ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ

0: जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ

0: आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय

0: अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फारम साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदेआं लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी साबरकोटी दे गाए लोक गीतां दा आनंद माणोगे।

राजस्थान तो ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। अगला खा सानू आया जी बाघा पुराण तो सतनाम सिंह रखड़ा, अमरजीत कौर रखड़ा, पोतरा तेग फतेह सिंह रखड़ा, पोतरी जसगुण रखड़ा। अगला सानू पिंड घुबाया जिला तहसील जलालाबाद जिला फाजिलका तो पप्पू मुनीम, अमोरबाई, राजू फौजी, हरप्रीत कौर, बलजीत कौर, परमेश सिंह, पोतरे गुरनूर, परनीत कौर, नवदीप, बबलू माणो। तो इन्हां ने सानू जिहड़ा ने सारे ने मिली जुली साड़ी जिहड़ी फरमाइश है वह भेजी है जी फिरोज़ खान दे इस प्यारे जे गीत की। आओ सुनते हाँ ये प्यारा जहा गीत फिरोज़ खान की आवाज़ के।

सो ये बड़ा ही खूबसूरत गीत तुम सुनया नछत्र गिल की आवाज़ दे विच। सो मैं गल कर रहा सी खुशी की। खुशी इंसान नू उसके रोजाना के बरतारे ते भी निर्भर करती है। मसलन जेकर कोई व्यक्ति बहुत देर तक सौंदा रहिंदा है तो उस अंदर आलस ते सुस्ती रहिंदी है, जिस नाल ओ हमेशा टहिंदी कला विच रहेगा। इस किसी भी चीज़ नू ओ नैगेटिव तरीके दे नाल लेगा। इस तरह खाण पीण दीआं चीज़ां दा भी ख्याल रखो। जेकर तरी भुली चीज़ खांदे रहोगे तो तुहाडी हाजमा खराब रहेगा, जिस नाल तुहाडा ध्यान अपनी सेहत वल रहेगा, जिस नाल तुहानू खुशी जिहड़ी आ तुहाडे तों दूर हो जाएगी। सो इस करके खुशी लई अपनी सेहत दा भी चंगा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस दे नाल तुहाडे वध्दियां तुहाडियां अगली चिट्ठियां वल। अगली जिहड़ी सानू चिट्ठी आई है वह आई है जी गगड़ शहर हाजीपुर तों मनमोहन चित्तू मामा, मामा केर सिंह, मामी सदेश ते मासड़ दया राम, पवनाल हाजीपुर तों चौधरी गोकलदास, पुत्र विजय कुमार, के कौंडल ते आर के कौंडल। अगला सानू खत आया है जी रणधीर सिंह बांगड़, गुरमेज जो, गौरव, प्रवीण जोगम, बिहेन, मनराज, किरत, यमुना नगर, पिंड चगूड़ी, कस्बा रादौर तों बंसी लाल संधु, पिंड तेजा मोड़ी तो। अगला जिहड़ा सानू खत आया है जी ओ मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, संदीप उगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, हरिपाल कौर, मीनाक्षी तिवारी, आशु गुगलानी। अते अगला सानू खत आया है जी गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो हरदीप मिका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक ते मिका विरक। सो मैं अपनी गल दे विच

0: सभा की शुरुआत सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वख-वख सरकारी विभागों ते संगठनों विच नव नियुक्त नौजवानों नू 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र वंडे। पंजाब विच रोजगार मेले दौरान रेल कोच फैक्टरी कपूरथला च केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अते पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स च मुख प्रशासकीय अधिकारी ने नव नियुक्त नौजवानों नू नियुक्ति पत्र तकसीम किए। अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो अज नवी दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करनगे। सीबीएसई ने 12वीं जमात दीआं बोर्ड परीक्षावां दीआं उत्तर पुस्तकावां दीआं स्कैन कीतीआं कापियां हासिल करन दी आखरी तरीक एक दिन वधा के 24 मई कर दित्ती है। इंडियन ऑयल ने कहा है देश विच पेट्रोल अते डीजल दी सप्लाई स्थिर है अते ईंधन दी कोई कमी नहीं है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अत की गर्मी के मद्देनज़र पंजाब सरकार के सारे दफ्तर स्कूलों और कॉलेजों का समा बदलन का ऐलान। नवे समय मुताबक कामकाज का समा सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर 12:30 बजे तक होगा। पंजाब के कई हिस्सों में आवारा कुत्तियां वालों हमले दीयां घटनावां बारे वधदीयां चिंतावां विचकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है सूबा सरकार आवारा कुत्तियां बारे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों नूं इन बिन लागू करेगी। जलंधर स्थित इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्र अजय सहगल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार। मोहाली की विशेष अदालत ने उस 27 मई तक ईडी रिमांड से भेजा। आईपीएल में आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला लखनऊ में शामी 7:30 बजे पंजाब किंग्स नाल होगा। ये अज दियां न्यूज़ हेडलाइंस। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे आं प्रोग्राम खेड संसार।
1: खेड संसार खेड संसार प्रोग्राम सुनने वाले वीरेंद्र का नमस्कार है जी। पूरे हफ्ते दियां खेड सरगर्मियां लेके तुहाडी सेवा च हाजिर हां। अज के प्रोग्राम च जिन्हां बारे गलबात होएगी उहदी जानकारी तुहानूं दे दईए। आईपीएल क्रिकेट का रोमांच सिखर ते है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु गुजरात टाइटन ते सनराइजर्स हैदराबाद ये तो प्लेऑफ विच पहुंच चुकिया ने। चौथी टीम केड़ी होएगी इहदा फैसला होना अजे बाकी है। इसे ते चर्चा होएगी राष्ट्रीय पद्धर के क्रिकेट कोच आशुतोष होरां दे नाल। अंडर 18 हॉकी एशिया कप लई भारत की टीम का ऐलान हो चुका है। भारतीय महिला हॉकी टीम का भी ऐलान हो चुका है। इन्हां टीमां दीआं संभावनावां बारे साबका अंतरराष्ट्रीय पद्धर के हॉकी खिडारी ते हॉकी कोच रिपू दमन होरां दे नाल गलबात करांगे। गोरखपुर विच हुणे हुणे 46वीं जूनियर नैशनल रोइंग चैंपियनशिप हो के आती है। इस बारे पंजाब दी रोइंग फैडरेशन दे प्रधान जसबीर सिंह होरां दे नाल गलबात होएगी। भारत ने रगबी दी सेंट्रल एशिया ते साउथ एशिया चैंपियनशिप विच सिल्वर मैडल जित्तिया, इस दी चर्चा भी करांगे। सेपक टाकराज भी असी तमगा जित्तिया जी, इस बारे भी तुहानूं दस्सांगे किद्दां जित्तिया गया। इहदे नाल नाल और खेड सरगर्मियां बारे भी तुहानूं जानकारी देंगे। सो सुनते रहो आकाशवाणी जलंधर से साडा प्रोग्राम खेड संसार। खेड के मैदान सानू मनोरंजन ते रोमांच ते देंदे ही ने। इहदे नाल नाल बहुत सारे किस्से भी देंदे ने जिहड़े मिसाल बन जांदे ने कि खिडारी का जज्बा इदां दा हुंदा है कि उहदे सामने सिर्फ ते सिर्फ उहदा टीचा उहदा मकसद उहदी जित ही हुंदी है। इदां दी ही मिसाल जी साल 1975 दे हॉकी वर्ल्ड कप विच वेखण नूं मिली सी। 1975 विच कुआलालंपुर विखे हॉकी दा वर्ल्ड कप होया सी। सैमीफाइनल विच भारत दा मुकाबला मलेशिया दे नाल सी। भारत दे स्टार लेफ्ट विंगर हरचरण सिंह सन जिन्हां नूं मैच दे दौरान विरोधी खिडारी दी हॉकी सिद्धी सिर ते वज्जी। उन्हां दे सिर चों तेजी नाल खून वगण लग पिया। डॉक्टरां ने उन्हां नूं खेडण तों मना कीता सी, पर हरचरण सिंह होरां कहा कि मैं मैदान छड्ड के नहीं जावांगा। उन्हां ने सिर ते पट्टी बन्नी ते खून नाल लथपथ जर्सी विच ही दोबारा मैदान विच आए। एक्स्ट्रा टाइम विच हरचरण सिंह होरां ने अजिहा शानदार ते निर्णायक गोल किया जिसने भारत नूं सीधा फाइनल विच पहुंचा दिता सी ते उस तों बाद भारत यह वर्ल्ड कप जीत सकिया सी। सो हरचरण सिंह वर्गे खिडारियों का संकल्प उन्हां दा पक्का इरादा दृढ़ जज्बा सानू प्रेरणा देंदा है। खेड संसार प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए। आओ हुण असीं श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शबद कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करदे हां।

ने सतगुर कै बलिहारै, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। सच्चे गुरु ते परमेश्वर विच कोई भेद नहीं है। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। अकाल पुरख प्रभु आप ही सच्चा गुरु है, जिस दी वड्याई बयान नहीं कीती जा सकती, जिस दा विस्तार अत वड्डा है, बयान तो परे है। राग आसा विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोए न जाने तेरा केता केवड चीरा। सरवण करदे हां भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोए न जाने तेरा केता केवड जीरा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अवतार सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समुची मानवता दे रैबर ने जिसनू दसा गुरुआं दी जोत कह के भी सतिकार दिता जांदा है। पहली जोत साहिब श्री गुरु नानक देव जी तो लैके दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक दसा गुरुआं दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच विद्यमान है। मनुखता नू गफलत दी नींद विचों कढ़न वाले ज्ञान दा अदुत्ती चानण बख्शन वाले गुरु साहिबान तिना दी जोत उस अकाल पुरख प्रभु विच समा जांदी है जिवें सूरज दी किरण नाल मिलके बर्फ बने पानी दी कठोरता खत्म हो जांदी है। जिवें किरण सूरज नाल अपेद हो जांदी है तिवें मनुखी प्रकाश उस परम प्रकाश अंदर लीन हो के मुकम्मल हो जांदा है। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। सरवण करदे हां राग बिलावल विच उचारित साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दी इस रचना दा गायन डॉक्टर गुरनाम सिंह होरां पासों।

0: सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। साहेब, श्री गुरु अर्जन देव जी की इस रचना का गायन किया सी डॉक्टर गुरनाम सिंह होरा। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरमीत सिंह।
1: बिलावल महला पंजवां। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करणहारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता, आप कारण किया, बिनवंत नानक सेई जानह जिनी हर रस पिया। यह पावन बचन शहीदां दे सिरताज, बाणी के बोहित पंचम गुरदेव, धन श्री गुरु अर्जुन देव जी दे राग बिलावल विच उचारण किते हुए, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 846 उपर सुभायमान हन। इस शब्द विच गुरु पातशाह उस आत्मदर्शी प्रभु प्यारे दी आत्मक अवस्था दा जिक्र करदे हन, जिसने प्रभु दे गुण गाउंदिया होया अपने आपे नू परमात्मा विच लीन कीता है। जिवें कि मारू राग विच तीजे गुरदेव गुरु अमरदास जी दे बचन हन, अन दिन गुण गावै रंग राता, गुण कह गुणी समाएंदा। भाव प्रभु प्यारा प्रेम रंग विच रंगिया होया हर वेले परमात्मा दे गुण गाउंदा है। गुण उचार के ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ।

सब जोत तेरी जग जीवना, तू कट कट हर रंग रंगना, सब त्यावै तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना, तू सत सत पुरख निरंजना। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz DRM 864 kHz FM ਬੈਂਡ 100.8 MHz 100.9 MHz ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, 100.9 मेगाहर्ट्ज से DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है।

शामी 7:40 ते होएगा प्रोग्राम साहित्य सुधा। संस्कृत साहित्य विच पदोपकार दी भावना दा वर्णन। वाताकार डॉक्टर संजीव बख्शी। शामी 7:50 ते स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये लम्हे भी सुनाया जाएगा। राती 8 होएगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। सवा 8 होएगा प्रोग्राम सुरसरिता। इस प्रोग्राम दे विच आज गीत ते गजलां सुनाईयां जानगियां। गायक कलाकार पंडित चमन लाल पल्ला। तबले ते संगत करनगे जगमोहन सिंह जी। ढोलक ते प्रदीप कुमार। बांसुरी वादन गुरदीप सिंह ते गिटार वादन चरणजीत ढिल्लों जो। ते 8:45 ते होएगी समाचार संध्या। 9 News@9, 9:15 स्पॉटलाइट प्रोग्राम, 9:30 चित्र भारती, 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिदे विच अज दे कलाकार होंगे चंगेश्वरी CP माधवन नामपुथरी कर्नाटक शैली शास्त्र गायन करेंगे। इसी अज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ते उन्हां दे प्रसारण समय दा वेरवा।

0: हाँ जी रुलिया राम जी,
1: संधू साहब बच्चों देखो झोने की फसल के आप सारे जानते हैं कि हुण सिर ते खड़ी फसल है साडे, क्योंकि आप ब्यूंदबंदी करनी है और झोने के झोने की किस्म का बड़ा महत्व है। जिदा मैं पहला भी जिक्र किया है कि किस्म तो गल शुरू हो जाती है, फिर ताड़ा लुआई का ढंग तरीका की है, DSR है या मशीनों अपने लुआई करनी है, अलग अलग विधियां है, अलग अलग प्रणालियां है, पर यह है कि किस्म जिहड़ी है जो मारा मनु सिफारिश की जाती है सानू उही किस्म बीजनी चाहिए है। कई बार आप तजर्बों के तौर पर इधरों उधरों जिहड़ा है किस्म लै आने वह किते ना किते फिर खेत दे विच आके रला हो जाता है, सारी फसल के उत्ते वट्टा पै जाता है।
0: बिल्कुल जी, भाव भी उस मुताबक मिलते हैं जी,
1: मिलते है। सो झोने का वध झाड़ देने वाली किस्मों के बाबत डॉक्टर मनदीप सिंह होरां को जानकारियां सांझियां कीतियां, आप सांझियां करदे
2: हां। सब तो पहला मैं किसान वीरां नूं दसना चाहुंदा हाँ कि पंजाब दे विच कोई लगभग 32 लाख हैक्टेयर रकबे दे विच झोने की जिहड़ी काश्त आ उह कीती जांदी है, और तुहानूं जाण के खुशी होवेगी कि जिहड़ियां साडियां PR किस्मां ने जो कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा दे वल्लों सिफारिश कीतियां गईआं ने उन्हां दा कोई 70% रकबा जिहड़ा ये सारियां वरायटियां साडा ये कवर करदियां ने। सो किस्मां विच सब तो पहला मैं गल करांगा PR 133 किस्म जो कि इस साल पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा दे वल्लों सिफारिश की गई आ, और ये किस्म की सब तो वड्डी विशेषता यह आ कि एक तो यह दरम्याने समय में पक्कन वाली किस्म आ और इहदा झाड़ भी बहुत वधिया, लगभग 30.5 क्विंटल तक इहदा जिहड़ा झाड़ आ प्रति एकड़ हैगा, और ये जिहड़ी किस्म आ बीमारी का भी टाकरा करन दे समर्थ आ। 10 तरह दे जिहड़ियां बीमारियां ने पैथोजन ने जिहड़े झुलस रोग जिहड़ी बीमारी आम तौर पर झोने नूं पैंदी आ उहदा भी जिहड़ा टाकरा करन दे समर्थ हैगी आ, और यह लुवाई तो उपरंत कोई 111 दिन दे विच जिहड़ी आ पक के तैयार हो जाती आ, और इहदा जिहड़ा कद आ किसान वीरो 131 नालों 2 इंची छोटा जिहदे करके जिहड़ी डिगदी भी घट आ ते इहदा झाड़ भी बहुत वधिया वा। सो मैं सारे किसान वीरां नूं इहो बेनती करूँगा कि इहदा जिहड़ा बीज आ इह पंजाब दे साडे जिन्ने भी कृषि विज्ञान केंद्र ने फार्म सलाहकार सेवा केंद्र ने उत्थे इहदा बीज उपलब्ध आ, और 4 किलो की पैकिंग विच इहदा असीं जिहड़ा बीज आ उह किसानां नूं दे रहे हां। सो इस वारी जरूर तुसीं इह जिहड़ी नवीं किस्म आ इहदा जिहड़ा रकबा वा जरूर एक एक एकड़ जिहड़ा वा ये तुसीं जरूर इहदा लगाओ तां जो अगले साल कितें तुहानूं बीज बन जूगा, और दूसरा तुहानूं वरायटी की जिहड़ी हैगी आ किद्दां दी तड़ी जमीन नूं मानदी आ उहदे बारे वी जिहड़ा तुहानूं इह पता लग जाएगा। इस तों इलावा किसान वीरो जदों भी कोई नवीं किस्म आउंदी आ जां यूनिवर्सिटी वल्लों पास की जाती आ उहदी सब तो पहलां परख हुंदी आ, और वख-वख ट्रायलां दे विच इह जिहड़ी वरायटी आ इहने वधिया जिहड़ा झाड़ दित्ता सी तां ही अगे जिहड़ी आ वरायटी यूनिवर्सिटी वल्लों रिलीज़ की जाती आ। और एक तुहानूं होर दसूंगा कि इहदी जिहड़ी चौलां दी क्वालिटी आ जिहड़ी मतलब उह बहुत वधिया वा, जिहदे करके जिहड़े मिलर एसोसीएशन वाले आ उन्हां ने वी इहदे विच हां पक्की हुंगारा भरिया, क्योंकि जदों वरायटी पास हुंदी आ यूनिवर्सिटी दे विच साडे खेत साइंटिस्ट और जिहड़े साडे मिलर एसोसीएशन जिहड़ी हुंदी आ उहनां दे प्रधान वी विच हुंदे आ, और उहनां दी सही पाउण तों बाद ही जिहड़ी जदों तसल्ली हुंदी आ फिर ही वरायटी जिहड़ी आ किसानां नूं जिहड़ी उह दित्ती जांदी आ। सो जरूर तुसीं इहदा जिहड़ा रकबा वा अपने खेतां विच इस वारी जिहड़ा लगाओ। उस तों बाद अगली किस्म आ किसान वीरो PR 132, ये जिहड़ी किस्म आ पिछले साल पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा ने सिफारिश की सी, और ये किस्म की यह विशेषता वा भी घट खाद दे नाल वध झाड़ दिंदी आ, कहण तों भाव यह आ कि ये जिहड़ी किस्म आ इहनूं आपां सिर्फ ते सिर्फ 60 किलो यूरिया ही पाउणी आ, और जिहड़ियां दूजियां किस्म जिवें उपर मैं तुहानूं दसी आ PR 133 उहनूं 90 किलो यूरिया जिहड़ी सिफारिश की हुई आ। सो ये जिहड़ी किस्म आ इह 25% घट खाद दे नाल ही सानूं उन्ना झाड़ दे जांदी आ, 30-31 क्विंटल तक इहदा झाड़ जिहड़ा आ जांदा वा, और इहदा कद थोड़ा लंबा वा, बस इहनूं खाद जिहड़ी आ उह आपां 60 किलो ही पाउणी है तां जो ये डिगे ना ते इहदा झाड़ भी जिहड़ा वधिया रहे। यह भी किस्म तुसीं अपने खेतां दे विच जिहड़ा वा लगा सकदे हो। उस तों बाद अग्गे आउंदी आ जी PR 131 किस्म। किसान वीरो जिहड़ी किस्म आ जिवें पंजाब दी जे मैं गल करां ते इक हर किस्म दी इक निच बनी हुई आ, जिवें मतलब ये जिहड़ी किस्म आ जिवें तरन तारण हो गया, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट ते बठिंडा इस एरिए दे विच बैल्ट दे विच ये काफ़ी किस्म जिहड़ी आ PR 131 लग रही आ, चंगी वरायटी आ, अच्छा इहदा झाड़ आ, 30 क्विंटल तक इहदा जिहड़ा झाड़ आ किसान वीरां ने प्राप्त किया होया वा, इहदा भी तुसीं जिहड़ा रकबा वा ये कुछ एरिया जिहड़ा तुसीं जरूर अपने खेतां विच लगा सकदे हो। उस तों बाद अग्गे आउंदा वा भी कई किसान

0: भी तेरा ही प्रताप है जयचंद।
1: मेरा प्रताप है, तेरे पतन ने देश नू उत्ते उठन दा मार्ग खोल दिता। छोटे छोटे राजा ने संगठन दा मूल समझिया ते चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य दी मदद नाल विशाल साम्राज्य दी स्थापना कीती।
2: तेरा ये कहना सच है जयचंद, मैं इस दी गवाह हां।
1: इन्ना ही नहीं देवी, व्यापार दे चार नवे हिस्सों ते बूहे खुले, देश दी सभ्यता ते संस्कृति ते बहुत वधिया प्रभाव पिया। इसलिए मैं कहिंदा हां कि अंबिक ने देश दे उपर उपकार कीता है। सच्चा राष्ट्रद्रोही ते देश दा शत्रु मैं हां। मैं
0: जी गल है ता सबूत दियो।
1: देना हां, हुणे देना हां। जिस समय कन्नौज विच मेरा राज सी, उस समय उत्तरी भारत बहुत सारे छोटे छोटे राज्यां च वंडिया होया सी। आपसी सहयोग दी भावना दी सदा कमी सी। इस फुट दा लाभ चुक के मुहम्मद गौरी ने भारत ते हमला कीता। दिल्ली दे राजा पृथ्वीराज चौहान ने मदद दे लई झोली फैलाई। मेरे कोल भी राजकवि चंद्र बरदाई दूत बन के आया सी।
3: महाराज, देश ते मुसीबत दे बदल छा रहे ने।
1: हाँ, देश ते या दिल्ली ते, तेरी कल्पना दी प्रशंसा करदा हां राजकवि।
3: विदेशियां दी जो हनेरी आ रही है महाराज, वो अजमेर, दिल्ली, कनौज, गुजरात, बिहार ते बंगाल दा भेद नहीं जानदी। वो एक कोने तो उठ के पूरे देश च फैल रही है।
1: मैनू ओदी कोई चिंता नहीं।
3: साडे महाराज चिंतित ने, इस दी तुहाडी सेवा विच हाजिर होया।
1: मदद दे लई?
3: हाँ, मदद दे लई। साडे महाराज दा विचार है कि जे असी संगठित होके शत्रु दी सेना नाल मोर्चा ना लाया तो हार निश्चित है।
1: केदी हार? दिल्ली पृथ्वीराज चौहान दी? तेरे मुँहों अजिहे शब्द सुन के मैनू शर्म आ रही है।
3: व्यंग करन दा समा नहीं महाराज, ये मुसीबत दा समा है।
1: मदद दिल्ली दे लई है, कनौज दे लई नहीं। राठौरां दियां तलवारां दा पानी हले मरिया नहीं। जाओ कह देना अपने कायर महाराज नूं कि जे अपने राज दी रक्षा नहीं कर सकदे तां संन्यास लै लैन। राठौर अपने अपमान नूं जीवन भर नहीं भुलदे। सानू दिल्ली पतन ते खुशी ही होएगी।
3: व्यक्तिगत मान सम्मान, अपमान देश दी आज़ादी ते सम्मान तो वड्डा नहीं है महाराज। अपने फैसले ते फिर विचार कर लो। लगभग 100 राजकुमार संयुक्त रक्षा संघ विच शामिल हो गए ने। तुसी भी
1: मूर्ख ने ओ जो थोड़े महाराज दे कपट जाल च फस गए। शत्रु सेना दा डर विखा के थोड़े महाराज उन्होंने अपने झंडे दे थले लाना चाहते ने। एक क्षत्री राज दा सुपना वेखते ने ओ, पर मेरे रहिंदिया उन्हों दा सुपना कदे पूरा नहीं होएगा।
3: महाराज
1: हुण तू जा सकदा है। महाराज इतिहास पुरुष, मैं उस वेले पृथ्वीराज दी कोई मदद नहीं कीती।
2: पर फिर भी उसने तराई दे मैदान च मुहम्मद गौरी नू हरा दिता सी।
1: मैनू पृथ्वीराज दी जित ते बहुत दुख होया। मैं मुहम्मद गौरी नू दोबारा हमला करन लई भी सद्दा भेजिया।
4: इसदा सबूत की है?
1: चंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो विच एदा जिक्र कीता है महाराज।
2: पर सानू इसदा कोई ज्ञान नहीं है।
1: मेरी इस साजिश विच गुजरात दे सोलंकी भी शामिल सी। विश्वास ना होवे तो उन्हां तो पुछ लिया जावे।
5: असी तेरे ते विश्वास करदे हां जयचंद, अगे बोलो।
1: जी महाराज, दुश्मन नू देश दी कमजोरी तो जाणू करवा के अपना स्वार्थ साबित करना सब तो सौखा। मैं मुहम्मद गौरी नू भारतीय सेना दी युद्ध नीति दी कमजोरी तो जाणू करवा दिता सी। अपनी हार दे एक साल बाद ही उन्हें सन 1192 विच युद्ध मैदान विच पृथ्वीराज दे अक्स नू खंडित कर दिता। पृथ्वीराज दी हार राष्ट्र दी हार सी महाराज। उस दिन भारत विच विदेशी सत्ता दी नींव पै गई सी।

0: गौरी ने तेरे सहयोग दे लई तैनू की इनाम दिता।
1: देश त्रोह दा की इनाम हो सकता है महाराज? 2 साल बाद ही उन्हें मेरे राज ते भी हमला किया ते मेरे राज ते भी कब्जा कर लिया।
2: तुहाडे कहन दा मतलब ये है कि जे तुसी पृथ्वीराज की मदद कर दे ते शत्रु नू असिद्धे रूप च सहयोग ना देंदे ता देश विच विदेशियां दा राज ना हुंदा?
1: हाँ महामात्या, हाँ। इसे लई तां मैं कह रहा कि देश की आजादी का सौदा करन वाला सच्चा ते वधिया राष्ट्र द्रोही मैं ही हाँ। अंबीक मेरी समानता 100 जन्म विच भी नहीं कर सकता।
3: मैं तेरे नाल बिल्कुल सहमत हाँ जयचंद।
1: मेरी निमर बेनती है महाराज कि देश द्रोह रतन की उपाधि नाल मैनू ही सन्मानित किया जाए ते सोने का मुकुट मैनू दिता जाए।
3: रुको, इतिहास पुरश की सभा विच बिना कारण हसन की दलेरी किस दुष्ट ने की है?
4: नाचीज नू मीर जाफर कहते ने अलीजा। पर मैं बिना वजह नहीं हसया।
3: इस बदतमीजी नाल हसन दा कारण?
4: जय चंद दा झूठा दावा।
1: मैनू झूठा कहन वाला ढोंगी कौन है तू?
4: तमीज ना गल कर जय चंद, मैं अपना नाम दस चुका।
3: अच्छा, ता तेरा मतलब है कि जय चंद देश धरोइया विचों श्रोमणी नहीं है?
4: हरगिज नहीं, जय चंद ते पृथ्वीराज विच मनमुटाव सी इसलिए।
1: पर ये झूठ है।
4: मेरे सवालों का जवाब दियो, हुणे राज खुल जाएगा। दसो तुसी अपनी धी संयोगता दे व्याह लई स्वंबर रचाया सी जां नहीं?
1: हाँ, पर
4: पृथ्वीराज दे कोल दावतनामा भेजिया सी?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
4: क्यों?
1: क्योंकि
4: तू उस नू जानता सी कि उस दी बेइज्जती करन दी गरज नाल तू उस दा बुत बनवा के फाटक कोल रखवा दिता सी, पर संयोगता ने उस बुत दे गले विच माला पा दित्ती। पृथ्वीराज उत्थे ही छुपिया बैठा सी। वह तेरी धी नू घोड़े ते बिठा के भज गया ते तेरी फौज उस रोक भी ना सकी।
1: मैं मानता हाँ यह सच है, पर
4: सड़े थे लून छिड़क दिता सी उसने, इसलिए तू उसकी मदद ही नहीं की। तू चाहता सी कि वह हार जाए तो जब मोहम्मद गौरी लुट खो करके वापस चला जाए उदो तू दिल्ली ते कब्जा कर लवे ते उत्तरी हिंदुस्तान का शहनशाह बन जाए।
3: की ए सच है जयचंद?
4: अलीजा, ये समझते सी कि गौरी दूजे सारे हमलावर दे वांग सिर्फ लुट खो करन दी गरज नाल आया है, पर इन्हां नू पता हुंदा कि उसका इरादा हिंदुस्तान च सल्तनत कायम करन दा है तो पृथ्वीराज दी मदद जरूर कर दे ते अज मुल्क दा सब तो वड्डा गद्दार होण दा दावा ना कर दे।
3: तुहाडियां गल्लां विच सच्चाई मालूम हुंदी है मीर जाफर। फिर तां देश दा शत्रु जयचंद नहीं अंभीक ही है।
4: देश दा सब तो वड्डा दुश्मन ता मैं आली जा।
2: तू?
4: जी हां, मैं।
0: ए भी जय चंद दे वांग टोंगी है महाराज। मेरे तो वड्डा देश त्रोही होर कोई हो ही नहीं सकता।
4: मैनू अपना दावा साबित करन दा मौका दियो आली जा।
1: ए महाकपटी है महाराज, महाकपटी।
3: जयचंद चुप रहो। हां मीर जाफर, अपनी गल कहो, असी सुनना चाहते हैं।
4: अलीजा, सन 1756 ईस्वी विच बंगाल विच नवाब अली वर्दी खान की मौत तो बाद उसका पोतरा सिराजुद्दौला गद्दी ते बैठा। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की सी ते उस विच हकूमत करन दा बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं सी।
2: अली वर्दी खान नाल तुहाडा भी कोई रिश्ता सी?
4: जी हाँ, मैं उन्हां दा जीजा सी ते मैनू सल्तनत दे कम्मां दा बहुत तजुर्बा सी।
1: ते तू चाहुंदा सी कि गद्दी तैनू मिले?
4: बेशक, मेरा हक सी ते मुल्क दे हालात वेखदे होए इस दी लोड़ भी सी।
0: फिर तां तू उस जवान शासक दे नाल जरूर विश्वासघात कीता होवेगा।
3: तुसी चुप रहो अंबीक। हां मीर जाफर, फिर की होया?
4: सिराजुद्दौला

0: उस दिन मौत हो गई।
1: हाँ भाई, देश द्रोही दा एहो ही अंत हुंदा है।
0: मेरा भी घट बुरा हाल नहीं होया अलीजा, मैं तो ना दा ही नवाब सी, असली नवाब तो कलाई भी सी। 1760 ईस्वी विच जदों कलाई वलैत चला गया तो नवे गवर्नर हैनरी विनस्टार्ट ने मैनु गद्दी तो उतार के मेरे जोई मीर कासिम नु नवाब बना दिता।
2: ते तू उस दा विरोध नहीं किता?
0: मैं गद्दार हां ते गद्दार सत्तारी जिउंदा है, मैं चुप के रहिंदा? कंपनी दे अफसरां नु मीर कासिम दे खिलाफ भड़कांदा रहा, मेरी चाल असरदार हुई। मीर कासिम ते कंपनी विच विगाड़ पै गया, वो मदद दे लई अवध वल भज्या। कंपनी ने फिर मैनू नवाब बना दिता।
1: फिर मीर कासिम दा की बनया?
0: मीर कासिम ते सिराजू दौला ते शाह आलम दीआं फौजां नू अंग्रेज़ां ने बक्सर दी जंग विच हरा दिता। इस जित विच अंग्रेज़ां दे पैर हिंदुस्तान विच बहुत मजबूत हो गए। कलाइव फिर गवर्नर बन गया ते मैं एक सुलानामे ते दस्तखत कर दिते। अलीजा, इस दस्तखत ने मुल्क विच अंग्रेजी सल्तनत दी नींह रखी।
2: उसे संधि पत्र ने बंगाल च दोहरे शासन प्रबंध का काम शुरू किया ते इसे कारण अगे चल के बंगाल दे नवाबी का अंत हो गया।
0: हुण तुसी दसो अलीजा, असली गद्दार कौन है? देश का दुश्मन कौन है?
3: गद्दार मैं हां, देश का दुश्मन मैं हां।
1: कौन?
2: ए किसकी आवाज है?
1: कौन है भाई तू? सामने क्यों नहीं आ रहा?
3: मैं वही हां, इसे सभा भवन च, पर तुसी लोग मैनू वेख नहीं सकते।
2: की ना है तेरा?
3: मेरा कोई ना नहीं।
1: धर्म?
3: मेरा कोई धर्म भी नहीं, मैं अनाम हां, अनाम।
2: फिर तू है कौन?
3: देश दा सब तो वड्डा दुश्मन।
1: किस काल विच तेरा जन्म होया सी?
3: मैं कल सी, आज हां ते कल भी रहांगा। काल ते थां दी कोई पाबंदी नहीं मेरे ते। स्वार्थ, स्वार्थ ही मेरा धर्म है। मैं बहलौंदा फुसलौंदा, कदे गरीबी तो मुक्ति दे नारे च उलझा के रखदा, ते कदे रोजगार ते महंगाई दे मुद्दे ते विदेशियां नू अपनी धरती ते वसाउंदा, ताकि लोड़ पैण ते ओ मेरे लिए चिल्लाउण, छाती पिट के रोण। कदे उन्हां नू रब दे नां ते लड़ा दिंदा, ते कदे धर्म ते संप्रदाय दे नां ते दंगे करवाउंदा, ते कदे भाषा संस्कृति दे नां ते। जदों भाई भाई दा दुश्मन खून दियां नदियां वहाउंदा है, तां मैं हसदा, जी खोल के हसदा।
1: ओ पापी, होर की करदा?
3: मैं ओ हर काम करदा जो समाज विरोधी है, जो जो राष्ट्र विरोधी है।
4: महाराज, महाराज, ए प्रबंधक है, प्रबंधक। देश त्रोही ता मैं आ, मैं।
5: देश त्रोही तू नहीं, मैं आ, मैं।
3: तुसी तिन्ना ने देश दा की अहित कीता है? अहित ता मैं ही कर रहा, राष्ट्र विरोधी काम करके। राष्ट्र विरोधी काम करके, राष्ट्र दी एकता भंग करके, देश दे विकास च रुकावट पौनी, अपने छोटे जे स्वार्थ लई देश दे मान सम्मान ते मान नू मिट्टी च मिला के। सच्चा देश द्रोही मैं आ, मैं आ देश दा दुश्मन, ते इस मुकुट ते मेरा हक है, मेरा।
1: हां ता इत्थे मौजूद काउंसलर साहिबान ते जागरूक नागरिको, शांत हो के सोचो, शांत। तुसी आंभीक जयचंद मीर जाफर

0: रखी थी। श्री रूबियो ने आज दोपहर बाद नई दिल्ली देश सेवा तीर्थ विखे प्रधानमंत्री मोदी नाल मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच किया कि भारत ते अमरीका आलमी भलाई लई नेड़ियों काम करना जारी रखन के। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अते एनएसए अजीत डोवाल भी मीटिंग दौरान मौजूद सन। श्री रूबियो इस महीने की 26 तरीक नूं क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लैण लई भारत के 4 दिन दौरे ते ने और अज सवेरे अमरीका तो कोलकाता पहुंचे सन, जिथे उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया अते मदर टेरेसा के विरसे नूं श्रद्धांजलि दित्ती। विदेश मंत्री अते श्री रूबियो भलके दवली गलबात करनगे। इस दौरे तो भारत अमरीका व्यापक आलमी रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूती मिलण की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकां दे जीवन नूं बेहतर बनाउण अते सुखाला करन दा एक महत्वपूर्ण साधन ने। उन्होंने गल अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 19वें नौकरी मेले रुजगार मेले नूं संबोधन करदिया कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों विच अपना भरोसा रखिया अते हुण इह उन्हां दी जिम्मेवारी है कि वह उन्हां दे समर्पण विहार अते रोजाना दे कम्मां राही उस भरोसे दा सन्मान करन ते उस नूं मजबूत करन। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने की तांग रखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के अहद नाल काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवे नियुक्त हुए मुलाजमान IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की वरतों करने लिए भी उत्साहित किया। 19वें सालाना रोजगार मेले विच वख वख सरकारी विभागों आते संगठनों विच 51,000 तो वध नवे भर्ती हुए नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह रोजगार मेला देश भर में 47 थावां ते कराया गया सी। देश भर तो चुने गए ये नवे मुलाजम कई वख वख मंत्रालयां ते विभागां जिवें कि रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ते उच्च सिक्ख्या विभाग विच सेवा निभाउणगे। पंजाब विच 19वां रोजगार मेला अज रेल कोच फैक्टरी RCF कपूरथला ते पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला समेत 2 थावां ते कराया गया, जिथे 281 नवे लाभपात्रियां नूं नियुक्ति पत्र वंडे गए। RCF कपूरथला विखे केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम की प्रधानगी करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक शक्तिशाली राष्ट्रीय संस्था बन गया जो पारदर्शिता अते योग्यता आधारित समाबद्ध भर्ती नूं यकीनी बनाउंदा है।
2: रोजगार मेला देश भर में पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। आज देश भर में 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ये ईच अपॉइंटमेंट लेटर एक सिर्फ सरकारी या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक तरफ से ये नेशन बिल्डिंग के लिए प्लेज भी है फॉर द शेयर्ड ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया।
0: बाद विच उन्होंने 93 नवे नियुक्त हुए उम्मीदवारों नूं नियुक्ति पत्र तकसीम किए। उधर पटियाला विच पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स के मुख प्रशासकीय अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव ने मुख मेहमान वजो शिरकत करदिया वख वख विभागों विच नवे भर्ती किए गए 188 नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान नवे नियुक्त हुए उम्मीदवारों ने अपनी खुशी जाहिर करदिया कहा,
3: मेरा नाम अजय कुमार है, मैं राजस्थान के जिला बीकानेर का रहने वाला हूं और मेरा चयन SBI जूनियर एसोसिएट के पद पर हुआ है। केंद्र सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।
4: मैं आकाश वर्मा जोधपुर राजस्थान से हूं, मुझे रेलवे में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति मिली है।
5: मेरा नाम ज्योति है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूं। मैं SBI जूनियर एसोसिएट पद पर चयनित की गई हूं। मैं केंद्रीय सरकार को तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करती हूं।
6: माय नेम इज तजिंदर सिंह कंडा एंड आई एम फ्रॉम बठिंडा पंजाब and I'm selected for junior associate in State Bank of India. I'm so grateful for the central government to give me the opportunity to serve the nation.
7: मेरा नाम विजय दुबे है, मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। मुझे प्रोडक्शन यूनिट में एज अ JE मैकेनिकल जॉब मैंने पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
8: मेरा नाम शालिनी चतुर्वेदी है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। 2026 में मेरा सिलेक्शन एज ए डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के तौर पर हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी हूँ।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस

0: सेहत जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी का ए जलंधर केंद्र है। शाम के 7:40 हो रहे हैं। हुन पेश है प्रोग्राम साहित्य सुधा। संस्कृत साहित्य विच परोपकार की भावना का वर्णन, यह है अज का विशा। ते वार्ताकार ने डॉक्टर संजीव बख्शी।
2: जेकर संस्कृत साहित्य विच परोपकार की भावना की गल करिए, असी कह सकते हाँ कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार ही परोपकार, दया, सहानुभूति और लोक मंगल की भावना है। संस्कृत साहित्य विच मनुख नूं केवल अपने लिए नहीं सगों समूह जीव जगत की भलाई लई जीवन की प्रेरणा दी जाई है। परोपकार का अर्थ है दूजियां दे हित लई कीता गया कारज। संस्कृत साहित्य विच इस गुण नूं मनुखता का सब तो वड्डा आभूषण मनदा है। सब तो पहला हितोपदेश का प्रसिद्ध श्लोक याद आउंदा है, परोपकार आय फलंती वृक्षा, परोपकार आय वहंती नद्य, परोपकार आय दुहंती गावह, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। अर्थात रुख दूजियां लई फल दिंदे हन ते नदियां दूजियां लई वहिंदियां हन, गावां दूजियां लई दुध दिंदियां हन ते इह मनुखी शरीर भी परोपकार लई ही बणिया है। इह श्लोक सानू सिखाउंदा है कि कुदरत दा हर तत् निष्काम सेवा करदा है, मनुख नूं भी इसे आदर्श नूं अपनाउणा चाहीदा है। वेदां विच भी लोक कल्याण की महान भावना प्रगट की गई है। यजुर्वेद विच प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भाव सारे मनुख सुखी होण, सारे रोग रहित होण, सब दा मंगल होवे ते कोई भी दुखी ना रहे। ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं सगों समूह मनुखता लई एक विश्व भाईचारे का संदेश है। ऋग्वेद विच मनुखां नूं इकट्ठे चलण ते एक दूजे की भलाई लई काम करन दा उपदेश दिता गया है। संघ छद्वम संघ दध्वम संवो मानांसी ज्ञानताम, अर्थात इकट्ठे चलो, इकट्ठे बोलो अते अपने मनां नूं एकता विच जोड़ो। उपनिषदां विच भी परोपकार की महिमा का विशेष वर्णन है। ईशावास्य उपनिषद विच त्याग अते सांझ की भावना उत्ते जोर दिता गया है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, भाव त्याग की भावना नाल भोग करो, अर्थात अपने सुख विच दूजियां दा हिस्सा भी समझो। उपनिषद का प्रसिद्ध वाक वसुधैव कुटुंबकम इस भावना ही दर्शाता है, अर्थात पूरी धरती एक परिवार है। यह भारतीय संस्कृति का सब तो उच्चा आदर्श है जो मनुख नूं जात धर्म ते भाषा तो उपर उठ के समूह जगत की सेवा करने लिए प्रेरित करता है। पुराणा विच भी परोपकार नूं धर्म का सर्वोत्तम रूप कहा गया है। स्कंद पुराण विच लिखा है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, यानी कि परोपकार करना पुन है ते दूजियां नूं दुख देना पाप है। इसी तरह रामायण विच भगवान राम का जीवन लोक हित ते त्याग का प्रतीक है। उन्होंने सदा प्रजा के हित नूं अपने निजी सुख तो उच्चा रखिया। महाभारत विच भी युधिष्ठर नूं धर्मराज इसे लई कहा गया क्योंकि वह हमेशा लोक कल्याण की सोच रखते सन। भरती हरि दे नीति शतक विच परोपकारी मनुख की महानता का वर्णन करते हुए कहा गया है, संत स्वयं पर हिते विता विहता विभो योगा, अर्थात संत सुभाव वाले मनुख सदा दूसरियां दी भलाई लई लगे रहिंदे हन। चाणक्य नीति विच भी परोपकार नूं मनुख दा सच्चा धर्म दस्या गया है। आचार्य चाणक्य कहिंदे हन, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। भाव परिवार की भलाई लई एक व्यक्ति का त्याग, पिंड की भलाई लई परिवार का त्याग ते देश की भलाई लई अपने निजी हितों का त्याग करना भी पवे तो कर देना चाहीदा है। यह उपदेश सानू निष्काम सेवा अते वड्डे हित लई छोटे स्वार्थ छड्डण की प्रेरणा दिंदा है। ऋग्वेद विच दान अते सेवा नू सब तो वड्डा धर्म मन्या गया है। इस अनुसार जो मनुख अपने धन ज्ञान ते ताकत नू दूजियां दी मदद लई वरतदा है उही सच्चा नेक इंसान है। स्वार्थ नूं छड्ड के लोड़वंदां दी सहायता करनी ही मनुखता दा असल मार्ग है। भगवत गीता विच भी भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया देश।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वर्कप्लेस के टॉक्सिक माहौल को ऐसे करें दूर, मेंटल हेल्थ रहेगी बेहतर। खराब माहौल से कर्मचारियों के काम पर भी बहुत असर पड़ता है। वर्कप्लेस में बढ़ते टॉक्सिक माहौल का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खराब माहौल से तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में भाग ले। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस भागम भागी वाली जिंदगी में हर कोई कभी न कभी तनाव के दौर से जरूर गुजरता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव स्तर पर तनाव लेना अच्छा होता है, लेकिन यदि तनाव ज्यादा दिनों तक रहे तो यह आपके लाइफस्टाइल को बुरी तरह से प्रभावित करता है। बदलते दौर में कई बार ऑफिस के काम के चलते भी लोगों में तनाव आ जाता है और वर्कलोड का स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगता है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत नहीं रहते तो इससे आपके ऑफिस वर्क पर भी सीधा असर पड़ता है। पिछले कुछ समय में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तेजी से बढ़ी है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बात करना जरूरी है। अगर वर्कप्लेस में मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तब ये और भी अधिक जरूरी हो जाता है। सभी कार्यस्थल पर एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो मानसिक तौर पर कर्मचारियों को रिलैक्स फील करे। अगर वर्कप्लेस का माहौल बेहतर है तो काम का प्रेशर भी आसानी से फेस किया जा सकता है। वर्कप्लेस का खराब माहौल मेंटल हेल्थ पर असर डालता है और इससे आप स्ट्रेस, एंजाइटी और चिंता का शिकार होने लगते हैं। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे आपको हर काम या फिर हर बात पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि आप कैसे शांत स्वभाव से दूसरों को कब और कैसे एक प्रोफेशनल की तरह न बोल सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न टू से नो, न बोलना सीखे। ये एक बेहद जरूरी स्किल है। काम के बीच ब्रेक जरूर ले दोस्तों। कई लोग ऑफिस में काम के प्रेशर में लगातार घंटों बैठकर काम करते हैं। इसका मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि काम के बीच में माइक्रो ब्रेक जरूर ले और इस दौरान कुछ शारीरिक गतिविधि करें। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ जिम्मेदारी मिलते ही लेकिन वह उस काम को ठीक से नहीं जानते हैं और इस वजह से वह इसे लेकर तनाव में रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी से मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने से आप कमजोर साबित नहीं होंगे, हालांकि इससे आपके लोगों के बीच में मेलजोल जरूर बढ़ेगा जो आपको भविष्य में मदद करेगा। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बीइंग कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, ये बेहद जरूरी है कि इस भागम भागी और जिम्मेदारी भरी जिंदगी में अपने लिए समय जरूर निकाले। कई लोग काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। हर दिन कुछ घंटे खुद के लिए निकाले। फन एक्टिविटीज में भाग ले। पार्टिसिपेट इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क। कई लोग वर्कप्लेस में काफी रिजर्व होते हैं। ऐसी आदत कई बार कर्मचारियों को अकेला बना देता है। तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में हिस्सा ले। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे। मानसिक तौर पर

रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। आप खुद में ऐसी आदतों को डालें जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। अच्छी फिटनेस के लिए जरूरी है कि हर दिन एक्सरसाइज या फिर योगा, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज है, स्विमिंग है, डांस है, म्यूजिक थेरेपी है, ये सब आप अपनाएं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर इन दिनों लोग जागरूक होने लगे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, खान पान में परहेज से लेकर जिम में घंटे एक्सरसाइज करने तक आप सब कुछ करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना भी मेहनत कर ले, अगर आप मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते तो आप सेहतमंद नहीं हो सकते। मेंटल हेल्थ से अक्सर लोगों को दिमाग के डिप्रेशन जैसी चीजें सामने आती है। रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव के बारे में हम सोचते ही नहीं है। आपको बता दे कि ऑफिस में होने वाले रोज के टेंशन भी आपके सेहत के लिए बुरी साबित हो सकती है। ऑफिस के तनाव का आपके काम पर तो असर पड़ता ही है, आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि ऑफिस में मिलने वाले प्रेशर का आप पर ज्यादा असर न पड़े और आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहे। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में आरजे चेतन आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑफिस में भी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

ऑफिस में अगर योगा, मेडिटेशन, डांस या कोई फन एक्टिविटीज हो रही है तो समय बचाने के चक्कर में न पड़े और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पूरे ऑफिस को बुलाया गया हो उसमें जरूर शामिल हो। अगर आपको कोई भी बात मानसिक रूप से परेशान कर रही है तो इस बारे में अपने सीनियर से बात करें। आपके बॉस को पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या दिक्कत है। बॉस के जवाब से आप भी समझ जाएंगे कि आगे आपको क्या कदम उठाने हैं। वर्क लाइफ बैलेंस ये बेहद जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए बिना आपके दोनों ही गाड़ियां पटरी से उतर सकती है। ध्यान रहे कि घर में तनाव का असर आपके काम पर न पड़े। इसी तरह ऑफिस की टेंशन ऑफिस के एग्जिट तक ही आपके साथ रहनी चाहिए। इसके बाहर की दुनिया आपकी अपनी है। वर्क स्टेशन की सजावट, हाउ यू डेकोरेट योर वर्क प्लेस, ये छोटा सा लेकिन बेहद कारगर तरीका है। अपने वर्क स्टेशन पर अपने पसंदी के चीज सजाए, अपने परिवार वालों के तस्वीर सजा सकते हैं और कोई मोटिवेशनल कोट सामने लगा सकते हैं या आपको चीयर करने में मदद करेंगे। सो ऑल चीयर्स टू लाइफ। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लम्हे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ई जलंधर केंद्र है। हुन वेला हो रहा अगले प्रोग्राम दा जिदा नाम है सुलसा दिता। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुहानू सुनावांगे कुछ गीत ते गज़लां। गायक कलाकार ने पंडित चमन लाल भल्ला, तबला ते संगत करनगे जगमोहन सिंह, ढोलक ते प्रदीप कुमार, बांसुरी वादन गुरदीप सिंह जी दा, ते गिटार वादन चरणजीत ढिल्लों।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ 8:45 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 9:30 ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਗੀਤ ਕਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर

0: समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को

0: संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने

0: अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जान

0: माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. US Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the US Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का

0: सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड 19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर वी के श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग एल्कोहल टोबैको एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह।
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं, जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है, ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का, उसके साथ जुड़े हुए हैं।

0: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
1: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च मिला है, इससे हम लोग कर रहे सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
2: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
3: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2012

0: इससे इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहां पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहां से आकर के पनाह लेते हैं, वहां पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
4: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित

0: उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
1: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
2: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर, कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़, केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा, महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
0: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के

वो ध्वज के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी चित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्ण है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव

0: और लोकतांत्रिक विकास का आजीवन साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तथा आकाशवाणी राष्ट्र सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गाँव खेतों खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुँचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यह अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
2: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम में आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
4: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय पीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपुर्णितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी, इंटरनेट नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। We bring you a Carnatic vocal concert by Sri C.P. Madhavan Nambudiri, popularly known as Chengannasheri Madhavan Nambudiri. He is an A-grade vocal artist of Akashvani and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Shri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the R.L.V. College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashvani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashvani has provided a dignified

0: wide platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashvani for completing successful 90 years.
1: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार.
2: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम.
1: श्री चंदनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है.
2: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंड चापू ताल.

0: प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल, कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था पनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: That was पनियावर्तनम played on the मृदंगम by विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार and on the घटम by श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंदनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलिन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvira Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vara.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग

और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खुशी की गल दस गई पंजाब अच जित लिया जी।
1: क्या बात है जी, बहुत बहुत मुबारकां पंजाब दे जितने ते। हुण उम्मीद है कि कल दे जिहड़े होर
0: हाँ
1: मैच
0: जी
1: ने उन्हां दे विच फेरबदल इदां ही हो जावे और
0: हाँ
1: पंजाब
0: हो
1: जिहड़ा
0: जी,
1: है
0: हाँ जी
1: बिल्कुल
0: ऐ हो
1: क्वार्टर
0: जी।
1: फाइनल दे विच पहुंच जावे।
0: हाँ जी, कि मैंने ढोल दा गाना सुना दो, ढोल पीरो दा ढोल भी आ रही है अच्छा।
1: क्या बात है जी, क्या गाने दी फरमाइश कीती है। बिल्कुल जी, खुशी तुहाडे चेहरे ते झलक रही है। तुहाडे
0: हाँ
1: लई
0: जी, हाँ जी,
1: स्पेशल
0: हाँ
1: ढोल जगीरो दा मास्टर सलीम दी आवाज़ च गीत भेज रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकां, और
0: चंगा
1: इदां
0: जी,
1: ही
0: सत श्री अकाल जी,
1: कॉल करते रहो,
0: तुहानू
1: फोन
0: मुबारक,
1: करनी।
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: ठीक
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: है जी, सत श्री अकाल।

0: बात है नकुदर वाले में, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी जलंधर दे वेड़े च।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, होर सुनाओ की हाल चाल है। अच्छा जी, ड्राई क्लीन का काम कर दियो।
1: हाँ जी सर। हाँ जी,
0: क्या बात है, फिर ते पूरा दिन रौनक लगिया रहिंदियां ने।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तभी कृपा मारे मारे की कृपा जी, सतगुरु मारे की कृपा जी।
0: चलो कृपा इदा ही चाहिए है, ते आकाशवाणी का साथ फिर बनया रहिंदा प्रोग्राम च।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: मतलब कहने का भाव है कि काम के नाल नाल आकाशवाणी के प्रोग्राम चलते रहते हैं।
1: हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: इंजॉय करते हो सारे प्रोग्राम्स नू।
1: हाँ जी सर।
0: मैं क्या जी, इंजॉय करते हो सारे प्रोग्राम्स नू फिर।
1: हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: क्या बात है, ते आज फिर खास की सौगात साडे लई लेके आए हो।
1: अरे स्टॉक मेरा एक गाना सुनाओ सर।
0: ठीक है जी, किन्ना दा गाना सुनना चाहते हो
1: सर? सर बोर्डर फिल्म का सर।
0: हाँ जी
1: बॉर्डर फिल्म का।
0: बॉर्डर फिल्म दा साडे इत्थे पंजाबी गीत ज्यादा असीं प्ले करदे आं जी। बॉर्डर फिल्म जिहड़ा हिंदी पंजाबी फिल्म गीत दा प्रोग्राम है। पंजाबी कोई भी तुसीं एक्टर या मतलब उहनां दी एक्टर कहता है, पंजाबी गीतकार कोई संगीतकार दा कुछ कह सकदे हो तुसीं, या फिर साडी मर्जी असीं तुहाडे लई हमेशा प्ले कर ही दिंदे आं। ठीक है जी, तुहाडी पसंद और बिल्कुल असीं तुहाडे तक पहुँचा दिंदे आं जी। फोन करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी इदां ही कॉल करते रहो और साडे नाल प्रोग्राम से जुड़ते रहो। फोन करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू
0: जी। बिल्कुल जी, ये बहुत बार मैसेज साडे तक पहुँचता है कि हिंदी सॉन्ग्स भी कई बार दोस्त साणू चाहते ने विच प्ले करना, बट ये पंजाबी प्रोग्राम क्योंकि सौगात विच असी कोशिश करते हैं पंजाबी फिल्मों के गीत, पंजाबी गीतकारां दे गीत जिहड़े असी प्ले करदे आ कोशिश हुंदी है। कदी कदी वार वैसे हो जांदा, बट जिहड़ा वो बहुत 0.01% चांसेस ने। तो उसने फरमाइश की है हंसराज हंसुणा दी आवाज़ च गीत तक पहुँच रहे, मिलते हैं इस गीत तो बाद।

सितारों भरी रातें पसंद हैं, बुजुर्गों की कही हुई बातें पसंद हैं। यूं तो आप मुझे पूरी की पूरी पसंद है मैडम, पर सच जानिए सबसे ज्यादा मुझे आपकी आंखें पसंद हैं। सो रूदारी और अखां दा प्यार और जड़ा तुहाडा दिल दा एहसास है सौगात प्रोग्राम च बंदा पारस चढ़ा, क्योंकि यह सफ़र दे लास्ट पड़ाव वल असी जा रहे हैं। इश्क प्यार मुहब्बत दीआं गल्लां हो रही ने, क्योंकि इस तो ठीक बाद पंजाबी गीत तुहाडे लई असी लैके हाजिर होना, क्योंकि पंजाबी ड्यूट म्यूजिक है, फिर पंजाबी नाटक है, पहला पंजाबी नाटक फिर ड्यूट म्यूजिक, फिर उस तो बाद लगातार 4 बजे तक श्री दरबार साहिब अमृतसर का भी सीधा प्रसारण तुसी जिहड़ा गुरबाणी विचार करोगे। सो यह सफ़र जिहड़ा इदां ही सवेर तक साढ़े नाल चलता रहिंदा है। सो इस सफ़र दे विच मुहब्बत प्यार इश्क दीआं गल्लां हो रहीआं ने। सो अगला गीत मेरे वल्लों, जद तक कोई दोस्त साढ़े कोल या मैसेज पहुँचदा है जी, तुहाडे तक पहुँच रहा है, इंजॉय करो इस गीत नूं।

0: निरंजन
1: के कहता
0: अदराज ठाकुर
1: किड़े द्राज
0: ए वाला
1: आ ओ रिवॉल्वर
0: देख लो।
1: है पुराने मॉडल का रिवॉल्वर कितों है।
0: ये पिताजी दा
1: पर्याय
0: देख लो पिताजी दा है। चलो चलिए ना जल्दी करो।
1: तू रिवाल्वर बारे प्रमोद नू नहीं दसना चाहती।
0: नहीं
1: मैं दस दिया
0: पता नहीं मैं तो अपनी मन मर्जी कर दी हूँ। तुसी रिवॉल्वर मैनू फड़ाओ। मैं हमेशा ही मन मर्जी कर दी हूँ ते वो भी गजब दी होशियारी
1: प्रमोद
0: नाल। कौन होवेगा? प्रमोद? पर उहदे कोल तां चाबी है ही। घंटी क्यों बजा रहे हैं तुसी?
2: हाय रब्बा
0: तुसी ते कहंदे सो कि
2: कांता डार्लिंग मैं बहुत काली च है। सवेर दा झगड़ा
0: सवेर दा झगड़ा।
2: डार्लिंग प्लीज डायरेक्टर दी मीटिंग भी है ते मैं 5 मिनटां च पहुंचना भी है। मेरी अनक ते चाबियां
1: प्या है
2: ओ तू इत्थे की कर रहे हैं मेरी बीवी नाल बदमाशी।
1: एले पिस्तौल चला गोली।
2: चंगा चंगा मैनू देर हो रही है।
1: प्रमोद मैं ते कांता असि एक दूजे नू प्यार करते हैं।
2: ओ वधाई होवे मौका मुबारक।
0: प्रमोद
2: हो बोल
0: निरंजन सच कह रहा है।
2: तो बहुत चंगी गल है सच कह रहा थी।
0: तुहानू इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा।
2: निरंजन तू इनू किते सिनेमा वगैरह ले जा। मैं सचमुच बहुत काली च हैं।
0: बीवी नू कोई नसा के लै जावे तो तुहानू कोई फर्क नहीं पैंदा।
2: कांता डार्लिंग निरंजन मेरा बहुत पुराना ते पक्का दोस्त है।
0: मैं सोचिया सी मेरे वाल बुरी नजर नाल देखण वाले दी तुसी जान कढ लोगे पर तुसी
1: ते मैं सोचिया सी तू मेरे नाल वकील कोल चलेगा।
2: ड्राइवर सोचता होवेगा कि साहब चाबियां दे बहाने बीवी नाल चौल करन लग पे होंगे। मैं चलता हूं।
0: खबरदार प्रमोद मैं गोली मार देंगी।
2: निरंजन बास्टर्ड मेरी बीवी नू फसलाउना है तेरी जान काट देंगा गोली मार देंगा। कोट ला दे।
1: क्यों?
2: मैं बेचारे कोर्ट च छेक नहीं करना चाहता। लगता है मेरे ही कोर्ट है। क्यों
1: तू ही मैनू तोहफे दिता सी।
2: बस डार्लिंग मैं जावा।
0: तुसी दोवें आपस च मिले हुए हो।
1: ये सच नहीं।
0: इधर करो पिस्तौल।
2: हुण की होया है?
0: प्रमोद प्रमोद तुसी मैनू चाहुंदे हो कि नहीं?
2: कांता
0: मैं गोली मार देंगी तुहानू।
2: कांता डार्लिंग मैं तेरे लिए जान भी दे सकता है।
0: नरेंजन तू मैनू चाहुंदा है?
1: हाँ
2: ओके हुण मैं जावा।
0: प्रमोद मैं पापी हाँ। मैं तुहानू धोखा दिता है। मैनू माफ कर दियो।
1: प्रमोद मैनू भी माफ करना। असीं तैनू धोखा दिता है।
2: हो सकता है।
0: मैं अज शामी नंद लाल नू इत्थे बुलाया।
2: क्यों कि असी दोवां ने नंद लाल नू धोखा दिता है। ओके डार्लिंग देर हो रही है कांता शामी मिलांगे। ओके
0: तुसी मैनू माफ कर दिता है ना?
2: चंगा निरंजन तू कुछ कहना होवे तां मैनू दफ्तर च फोन करी 1:30 और 2 दे विचकार। ठीक है हुण मैं 6 बजे तो पहला वापस नहीं आवांगा। मौका मुबारक होवे।
0: मैनू समझ नहीं आती ऐसे पति का की किया जाए।
1: मैनू बहुत पछतावा हो गया है।
0: चलो छोड़ो चलो आपस में चल गए।
1: पिस्तौल तू इत्थे रहन दे।
0: इत्थे सोफे ते रख दी।
1: ठीक है हाँ चलिए
0: चलो।

0: फिर भावे मेरा कुछ भी बने।
1: यानी पहला वो तेनू अपने तो नीवा लगता सी, तो तू उसनू सिर्फ विलास का साधन मानती रही। हुण वो तेनू अपने आप तो वड्डा लगता है, तो तेनू बीते दिनों की याद करके तू समझती है कि तू लुट गई, इसलिए तू उसनू खत्म करना चाहनी है, तो उसनू तू बदले का ना दे रही है।
0: मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं उहदे कोलों बदला लेना चाहनी हाँ।
1: तो फिर शादी कर लै, इस ना तेरा कायल मन शांत भी हो जाएगा, तो फिर तू उसनू सारी जिंदगी सता के जेकर मारना चाहनी है, तड़पा तड़पा के खत्म करना चाहनी है, तेरी वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर कामनी नू इन्ना सबर ना सी, उसने केशव ठाकर दे जरिए शेखर खोसला नू नाटक च आउण दा निमंत्रण भिजवाया, अते उसनू मार के ही चैन दी साह लिती। मैं उस मनहूस कड़ी विच उसनू ये बुरी सलाह दिती सी, मैं ही इस गुनाह की जिम्मेदार हाँ, मैं भी सजा मिलनी चाहिए।
2: एक दिन रिहर्सल च मैं ते कामनी इकले बैठे सी, उदों ने मैनू दस्या कि शेखर खोसला बारे। मैं साड़े ते शक की अग विच चुलस गया, पर मैं उन्हूं सौं खुआ के सब कुछ कुहा लिया।
0: पाठक, एक आदमी मैनू परेशान कर रहा।
2: कौन है वो? ये लेखक?
0: नहीं, उदा एक दोस्त।
2: किमें परेशान कर रहे?
0: वो कहंदा है तू जगन्नाथ पाठक नाल शादी कर ले, नाटक कर, सब कुछ ठीक है, पर मेरे नाल भी संबंध रख।
2: व्हाट नॉनसेंस, की मतलब?
0: ओ जदों भी चाहे किसी बहाने नाल मैं उदी घोली बंदी बन के उदी सेवा करती रहा, बस यही चाहता।
2: ते जे तू सब कुछ ना मन्ने
0: ते वो कहंदा फिर वो मैनू नसा के लिया जाएगा।
2: की मतलब?
0: तुहानू कल्ला देख के अगवा करवा लेगा, मैनू अगवा करके लिया जाएगा, ते किते बंद रखेगा जदों तक मैं हाँ ना करा, छड़ेगा नहीं।
2: बहुत अमीर है?
0: हाँ, लखा रुपए ने उहदे कोल, नाले बदमाश भी है, बस तुसीं उहनू गुंडा समझो। पैसे अफरीका च कमाए ने, देश विदेश च उहदी बेशुमार दौलत है।
2: उस आदमी का नाम की है?
0: शेखर खोसला।
2: शेखर खोसला?
0: हाँ पाठ, मैं तेनू किवें दसदी।
2: कामनी, जां तां वह आदमी पागल है या बेवकूफ, या तू मेरे कोल टोंग रच रही है।
0: क्यों?
2: ये गल तू किस किस नू दसी है?
0: किसे नू भी नहीं।
2: तू फिर झूठ बोल रही है।
0: नहीं दसी, सच कह रही हूं मैं, कहती रही है तुहानू।
2: शेखर खोसला बारे तू प्रीतम भाई नू कुछ नहीं दसिया?
0: हाँ, उन्होंने कहा सी।
2: फिर?
0: पर ये गल नहीं दसी, केवल इन्ना ही दसिया सी कि वो मैनू ब्लैकमेल करना चाहता है।
2: तू जो कुछ कह रही है कि वह सच है?
0: हाँ पाठक, पर तुसी इन्ने शक्की क्यों हो रहे हो?
2: मैनू तेरी गल सच्ची नहीं लगती कामनी।
0: तुसी डर गए हो, कायर हो, हुण ही एक मिनट मगरू उहदी गल मन्नण लई तैयार हो जाओगे, क्योंकि तुहानू अगवा किते जाण दा डर है। यह भी डर है कि नाटक जगत च नाम नहीं कमा सकोगे। तुहाडे ते शेखर खोसला च कोई फर्क नहीं है पाठक, दोवां च मैनू कोई नहीं चाहुंदा। मेरे नाल इसलिए शादी करनी चाहुंदे हो कि मुफ्त च हीरोइन हथ आ जावे ते नाटक जगत च ना हो जावे, ते शेखर खोसला इसलिए शादी करना चाहुंदा है कि अपने दोस्तां नू दिखा सके कि एक मशहूर अभिनेत्री उहदे इशारियां ते नचदी है। तुसी दर्शकां दे सामने अपनी महानता सिद्ध करनी है, ते शिखर ने दोस्तां दे सामने। तुसी दोवें मैनू इस्तेमाल करना चाहुंदे हो, डरपोक हो तुसी, स्वार्थी, नीच, कमजोर।
2: एक शब्द भी होर किया ते मैं तेरा गल कुट दियांगा। मूर्खे, तू किनू मूर्ख बना रही है? इनिया वाहियात गलना नाल तू की समझदी है कि तू मैनू डरा लवेगी? मैं इस गल नाल डर जावांगा? सच सच दस, इस सच की है? बोल बोल, की सच है?
0: वाह मेरे प्रेमी, मैनू बचाउन दी थां खुद ही मेरे ते हाथ चुक दे हो, शक कर दे हो, फिर मेरे नाल शादी करनी चाहुंदे हो?
2: हाँ कामनी, शादी तां मैं हुण वी तेरे नाल करनी चाहुंदा, पर तेरियां मन घड़त गल्लां ते यकीन

0: करना जरूरी नहीं समझता।
1: मतलब कि मेरी गल्ला मन करतने।
0: हाँ, मन कड़ंत है। शेखर खोसला ना दा कोई बंदा है ही नहीं कामनी। तुम उस लेखक पीछे पागल है, क्योंकि वो तेनू देख के नशा आ जाता है। तेरिया गल्ला सुनन वास्ते वो सिर दे पार खलो जाता है। तेनू अजिहा कुत्ता चाहिदा है जेड़ा तेरे पिछे पूंछ ही लांदा फिरे।
1: ठीक है फिर। एक गल मैं फिर कदी नहीं छेड़ांगी। तुसी जो चाहो मन लेना, पर फिर मगरू मैनू दोष ना देना।
0: आई एम सॉरी कामनी, मैनू मैनू माफ कर दे।
1: नाटकां च ये डायलॉग इन्नी बार सुन चुकी हाँ कि हुण सारे नकली लगते ने, पर मैं ये किवें यकीन कर लवां पाठक कि असल कहानी कहानी नहीं है। शेखर खोसला घूमदा फिरदा जिंदा बंदा है। वो मेरे पीछे पिया है ते हजारां रुपए बर्बाद करन दीआं गल्लां करदा है।
0: मैनू यकीन नहीं आउंदा।
1: डरपोक स्वार्थी।
0: मूर्खे, बेवकूफ औरत, मैनू अगवा किते जान नाल तेरी शोहरत होर भी वध जाएगी। तेरे कहण मुताबक जेकर मैनू नाम कमाउण दा लोभ हुंदा तां मैं भी अगवा होण च बिल्कुल ना डरदा। पर तेरियां गल्लां बिल्कुल बकवास लगदियां, बिल्कुल बकवास। उहदियां गल्लां नूं बकवास मंनदिआं होइआ मैं भी इह नतीजा कढ़िआ कि ओह झूठ कामनी ने सिर्फ इसे लिए कड़िया कि लेखक अते उहदे संबंधां च परदा पिआ रहे। मैं लेखक नूं लांभे करन वास्ते कई ढंग कई तरीके सोचण लग पिआ। नाटक च कामनी ने कांता दी भूमिका लई सी अते अंत च उन्हें देश पांडे दा कतल करना सी। शक दे ऐसे डरावने पल विच मेरे दिमाग च पिस्तौल विच असली गोलियां भर देण दा ख्याल लाया अते अते ओ ख्याल इन्ना अनोखा लग्या कि मैं ठंडे दिमाग नाल उस ते अमल करन दे राह लभण लग पिया। नाटक लई असीं वरे पहलां पिस्तौल खरीद लिया सी, उहदे नाल रस्मी तौर ते गोलियां दा सैट भी खरीदिया सी। ड्रैस रिहर्सल मगरों मैं उस विच असली गोलियां भर दित्तियां। कामनी ने एनसीसी दी पिस्तौल सिखी सी अते मैनूं यकीन सी कि हथ च आउंदे ही उह पिस्तौल जरूर चला देवेगी। इस तरह देश पांडे दा रोल करन वाला लेखक केशव ठाकर मर जाएगा अते वो एक दुर्घटना ही मननी जाएगी बस। पर कामनी दी गल झूठी नहीं सी। शेखर खोसला सचमुच जिउंदा जागदा इंसान सी। कामनी उन्हों दशकां च बैठा देख के अपनी सुध-बुध खो बैठी थे ते उन्हें गोली दा निशाना बना लिया ते हासिल कीती उम्र कैद। उस खून लई मैं ही जिम्मेवार हां।
2: शेखर खोसला मेरा मित्र हैगा सी। उन्हें कई बार रुपए पैसे नाल मेरी इमदाद भी कीती हैगी सी। अब मेरी गरीबी दे दिनां च उन्हें खाने दे पैसे भी दिते। असीं सैकड़े रातां अपनी कोठड़ी च भविख बारे व्योंतबंदी करदिआं बिताईआं गईआं। पर शेखर खोसला नूं असीं चंगे लोकां च नहीं गिण सकदे हैगे। अब मेरे वास्ते शरीश होवे आ यानी कि कहिंदे शेखर ऐसी असलीयत हैगा सी जिस नूं सहन करना नामुमकिन सी। शेखर दी पत्नी उहदे झूठ कारण अद्धी पागल हो चुकी हैगी सी ते मेरी पत्नी मेरियां अखां च कट्टा पा के मैनूं रुला के शेखर दी गोली बांदी बन चुकी हैगी सी। शेखर खोसला मेरी जिंदगी दा नसूर हैगा सी। उहदा दर्द उहदी छूत किसे होर नूं देण दे इलावा कोई होर चारा ही नहीं सी बचा मेरे कोल। ते फिर मैं नाटक लिखिया रात रानी।
1: तुहानू नाटक हमेशा जीवन च ही लभदा है ना?
2: रात दी रानी दी गल कर रही है ना कामनी।
1: तुसी कह रहे सौ कि तुहाडा शेखर खोसला तुहाडी पत्नी उहनां लोकां ते ही तुसी इह नाटक लिखिया है?
2: हाँ, होर की।
1: हाँ, ते इह नवां नाटक किसे इक फुल दा नां लो।

0: कामनी जे सच पूछे तो मैं फिर तुहानू ही देख
1: शेखर खोसला दे अफ्रीका तो परतन मगरों तुसी उन्होंने मिले हो?
0: नहीं मिलिया, मिलना मैं चाहता भी नहीं हैगा।
1: ओनू साडा नाटक देखने ले नहीं सद्दोगे?
0: तदे सुंदर भाई इन्ने उत्तेजित होके पूछ गिछ कर रहे सी।
1: जी हाँ कवि जी, हर बंदा शेखर खोसला तो खौफ खांदा है।
0: कामनी मेरे कोल आके अपने दिल का भार हल्का कर जाती, सारिया गल्ला एवें बक जाती जिवें मैं कोई पत्थर की मूरत होवां या फिर ओदी डायरी।
1: प्रीतम नूं अपनी पत्नी दी बेवफाई दे हउवे ने डरा दित्ता। सुंदर नूं अपने तिगड़मां अते तक्कियां दा घमंड सी। ओनूं इह कह के डराया कि शेखर खोसला उस तों वी वड्डा ठग है ते वधेरे ताकतवर भी। ते अपने महान नाटक श्रोमणी जगन्नाथ महाशंकर पाठक नूं तां इक बच्चे वांग डरा दित्ता। इन्ना कह के कि शेखर खोसला तुहानू अगवा करके लै जावेगा।
0: ते फिर उस सचमुच डर गया।
1: एक अलग तरीके नाल डरिया, इन्ना ज्यादा कि गल नू सच्ची मन गया।
0: शायद शायद उन्हें तुहाडी चाल समझ ली होनी है गया, डर करके नहीं, असल नाल ये गल ए समझ लिया होना उन्हें कि गल तुहाडी झूठी है गया।
1: ओ मैनू प्यार करदा है, इस गल नू ना भुलो।
0: मतलब है कि जेड़ा तुहानू प्यार करना चाहे वो तुहाडी शेखर खोसला वाली धोखेबाजी भी मन्ने, है ना मन्ने तो दूर चला जाए।
1: हाँ शेखर खोसला मेरा है, मेरी मुठ विच है, होर किसे दा नहीं। मैं जदों चाहवां मुठ खोल के उस शीशे दे टुकड़े नू प्यार कर लवां।
0: फिर स्वाति नू किवें डराया?
1: हाँ स्वाति तां इस नन्हे शीशे दी चर्चा नाल ही डर गई। मैं क्या जेड़ा शीशा अपनी मुठ विच होवे एकदम उड़ के आकाश दा चमकदा सितारा बन जावे तां इह नहीं लगेगा कि असी लुटे गए। जिस नूं असी कल्यां उहदी कच्ची जवानी च प्राप्त कीता होवे उह ऐश दी अमानत अचानक सभना दी हो जावे तां झुंझलाहट ना होवेगी। मैं स्वाति नूं कहा, शेखर खोसला ने मैनूं ठुकराया है, मैं इहदा बदला लैणा है। ते उस सुंदर नूं गवा लैण दी कल्पना नाल डर गई, इन्ना डर गई कि
0: मतलब है कि प्रीतम नूं अपनी पत्नी गवा लैण दा डर हैगा, सुंदर नूं इह डर हैगा कि कोई उस तों वी वड्डा बदमाश पैदा हो गया हैगा। स्वाति इस डर नाल कंबदी है कि सुंदर उहदे हथों ना निकल जाए, ते पाठक पाठक इस गल नाल डर रहा कि कामनी केशव ठाकर नां दे कुत्ते नूं ना पा लवे। बड़े भेत ने जी, कोकीन वर्गा नशा हैगा सी कामनी दे दिमाग विच। शेखर खोसला दी कहानी दा उहनूं उस नशे दी आदत जो पै गई हैगी सी। हर दिन नाच दा अभ्यास करन वेले उच्चारण सही कराउण दे बहाने नाल मैनू बुलांदी ते मेरे नाल गल्लां करदी। इस तरह उहदी हौमै नूं सुख मिलदा ते अन्ने प्यार दी अन्नी सड़न नाल दीवाना होके पाठक मेरे नाल होर भी साऊ पुणे नाल पेश आ।
2: सुंदर बोलण च कौड़ा है पर तुसी उहदा बुरा ना मन्नियो, समझे मिस्टर ठाकर?
0: हां जी बिल्कुल समझ गया गा जी।
2: 15 ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ?
0: ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ।
2: ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ?
0: ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਮਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਤੇ
2: ਪਰ ਫੇਰ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰਨ ਪਰਦਾ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ,

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलों का आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज ऑन एयर। ये ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। ए बोल भगत रविदास जी द्वारा उचारित ने, जो अकाल पुरख नाल भगत जनादी प्रीत दे लखायक ने। दरअसल अकाल पुरख प्रभु पति नाल प्रीत उत्तम प्रीत है, प्यारी प्रीत है। जिड़े प्राणी सच्ची प्रीत विच विश्वास भरोसा रखते हैं, वो मन ही मन विच उस प्रभु दे दर्शन दीदार दी आस रखते हुए नैणा विच प्रभु दे दर्शना दी तांग रखते ने। प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवा वासा, नैनो तार तुहारी। सरवण करदे हां भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवा वासा, नैनो तार तुहारी। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवों आसा, नैनो तार तुहारी। रहाओ ओए दिन पहर मूरत पल कैसे, ओए पल करी किहारी। खुले कपट तपट बुझ तृष्णा, जीमो पेख दरसारी। कौन सो जतन उपाओ किनेहा, सेवा कौन बिचारी। मान अभिमान मोह तज नानक, संतै संग उधारी। ये पाक बचन धन श्री गुरु अर्जन देव जी दे राग के दारा विच उच्चारण किते हुए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 1120 ऊपर सुभाए मान हन। प्रिय की प्रीत प्यारी, प्रिय की तो भाव है प्यारे प्रभु जी दी, प्यारी तो मुराद है जिहड़ी मन नू पा जाए, मन नू चंगी लगे। भाव धन श्री गुरु अर्जन देव जी शब्द दा मरकजी भाव केंद्री भाव जाहर करदे हन कि मेरे मन नू प्यारे प्रभु जी दी प्रीत खिच पाउंदी रहिंदी है। जदों विचार करिए तां इउं प्रतीत हुंदा है कि प्रीतां दीआं किस्मां अनेकां हन अते प्रीतां करन वाले भी अनेकां हन, पर जो प्रभु परम पिता वाहगुरु सारिआं नू प्यार करदा है, अज दे पदार्थवादी युग विच संसार दे बहुत वड्डी गिनती विच जीव पदार्थां नाल शरीरां नाल ही प्रीतां पाई बैठे हन, पर जो वाहिगुरु साहिब सारे संसार दा करता है हरता है, उस नाल प्रीत

नानक मने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई गुरबचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

कच्चो कंचन पाया शब्द गुण सर्व ने सुनियो बिखते अमृत होया नाम सतगुर मुख भणिया लोह होया लाल नदर सतगुर

तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद शबद सकेरे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसते नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग

मुख देख गरु सुख पायो हुती जो प्यास पीयूष प्रवण की वंचित सिद्ध को विद मिलायो पूर्ण पो मन ठोर बसो रस बासुन सियो जो देह दिसतायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलहन तीर बिपा।

चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जपे नाम नव निध अपे रसन अनस रस सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख त्याजे अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तुम वंशवो।

देव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरयो प्रहलाद गुर मिलत।

राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाखश हरयो नख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तुही

साहिब होई दयाल, कृपा करे ता साई कार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म नाए सी, हुक्म मन्या होए प्रमाण ता खसमे का मैल पाए सी। खसमे पावे सो करे।